ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित है उपदेशं सं

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है। करण कारण समर्थ है, दान देत प्रापूर्ण है। निराश आस करण सगल अर्थ आले है। गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है। दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण है।

तथा वैष्णव ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना श्यामं अचर्ज रूपं तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद बसंत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़भागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर है विखम स्थान मन मोह मदरंग मां असाद पंज तस्कर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाद कोरंग अगम तीर नय लंघन है पज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मदर मानुखयं हृदयंग भूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयं सत हदंग परम बादंग अवर्तित है शुद्ध अशरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल नय पजंत तरण समान तिग जन्मन है।

पोव सुगंध परसमानोख देह मलीन मज्जा रुद्र दुर्गंध नानक अध करबेण अज्ञानो परमाणो परजंत आकाश है दीप लो से खंडन कशेण नैन पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध अते जानो सत होवंतो मरणो त्रिटेन मिथया कीत साथ चलंथो पणंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मत्रेख बांधव लब्धिंग सा संगेण नानक सुख स्थानं गोपाल भजन मैलागर सिंगेण निम बिरख से चंदन निकट बसंतो बांसो नानक अंग बुद्ध ना भोते गाथा गोप गोपाल कथंग मथंग मान मर्दन हतंग पंच स्तरेण नानक हर बाणे परहारण वचन साध सुख पंथ लहंता बड़ कर्मण रहंता जन्म मरणेन रमण नानक हर कीर्तन पत पुरजेन झड़ियंग न जड़ियंग पेड संपता ना बिहून बिखमता नानक बहंत जोन पासरो रैणी पावनी सा संगेन लभंतंग बड़ पागण हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर न व्यापण गाथा गूढ़ अपारंग समझणंग बिरला जन संसार काम तजणंग नानक गोविंद रमणंग साध संगम सुमंत्र साध बचना कोड दोख बिनासन हर चरण कमल ध्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण सुंदर मंदर सैन है जीन मध्य हर कीर्तन है मुक्ते रमण गोविंद है नानक लब्ध्यंग बड़ फागण हर लब्धो मित्र सुमितो पिदारण कदे ना चित्तो जा का अस्तल तोल अमितो तोई नानक सगा जी संग कितो अब जसंग मिटंत सद पुत्र है सिमरताब हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण है मरणंग विसरणंग गोविंद है जीवनंग हर नाम तिहावण लबणंग सा संगेण नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहून भुयंगंग मंत्रंग गारड़ी निवारंग प्याद उपाड़न संतंग नानक लब्ध कर्मण जद कथ रमणंग तरणंग सर्वत्र जीयण तस लगणंग प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यंग सिद्यंग सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पव्यंग परा पूर्वण शोभ बचन रमणंग कमणंग सा संगेण उदरणंग संसार सागरंग नानक पुनरप जन्मना लभ्यते वेद पुराण शस्त्र विचारंग एकंकार नाम उर्धारंग उलय समूह सगल उधारंग बड़भागी नानक कोतारंग सिमरणंग गोविंद नामंग उदरणंग कुल समूहण लब्ध्यंग सा संगेण नानक बड़भागी पेटंत दर्शन सर्व दोख परंग त्यागी सर्व धर्म तिरंतन है लब्धेन सा संगेण नानक मस्तक लिखेण।

यत्नं अरचनं सोमवरंगणै परोग सोग प्रयोगं नानक सुख ना सुपन है कुन है मोहल्ला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद आद कलम अगम मस्तक लेखावती उर्दर है ओ सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाय मुखों तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा में बैस के कीर्त में कहा आरती सब सी गार यो जियो सब देवा आस पिया सी सेज सोकंत वशाई है हरगा मस्तक हो वे भाग ता साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सब केश साजया तोले किए सीगार के अंजन पाजया जे करया वे कंत ता सब कुछ पाई है हरगा कंते बा सीगार सा बिरथा जाई है जिस करवसया कंत सावड भागणे जिस बणिया हव सीगार साई सो हागणे और सुती होए अत्यंत मन आस पुराईया हर हां जा कर आया कंत ता सब किछ पाईया आसा इत्ती आसक आस पुराईए सतगुर पए दयाल ता पूरा पाईए मैं तन अवगुण बहुत के अवगुण छाया हर हां सतगुर पए दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत त्याया तुत्र एव संसार सतगुरु तराया मिटिया आवा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरे हाथ पद्म आगन सुख बासना सखी मोरे कंठर तन पेख दुख नसना पासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद सिद्ध नव निद पसे जिस सदा कार पर तेरे रावण जाहे चेई ताला जी है नित प्रद हृदय पर दर्ब छिद्रकल ठाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते भय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोती तैत चमके बीजल मुखो ज्योति खोजत फिरो उपदेश तियो कद पाईए हर हां जे मस्तक होवे भाग ता दर्श समाईए इठे सबे थाव नहीं तुद जेया पदहो पुरख विधत ता तू सोया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नहाय रामदास सार चातरक चित सुचित तो साजन चाहिए जे संग लागे प्राण तिसे को आहिए बन बन फिर त्यो उदास बूंद जल कारणे हर हां त्यो हर जन मांगे नाम नानक बलिहारणे मितका चित अनूप मरमना जानिए काग गुणी अपार तो तत पछानिए चित चित समाए ता होवे रंग कना।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर का सोई ज तन बताए सखी प्रयोग पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहाल लिया करण न सुनगी नाद करण मुंद कालिया।

काजल की कोठरी अंध परे तसुमाहे हौं बलिहारी तिन कौ पैस जो नीकस जाहे कबीर इहो तन जाएगा।

है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए, इउं कहे रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया,

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहूं न पाया ठौर, जिन हर का नाम न चेतेओ, कहां भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए, जाते हुए बिनाहो। कबीर जग में चेत्यो जान के, जग में रहो समाए, जिन हर का नाम न चेत्यो, बाधे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की, अवरे आस निरास, नरक परे ते

की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, तैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कह कहो तय ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुण।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निशंक, जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों

पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोधक हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाडे संतई जो कोटक मिले असंत मलयागर पोयंगम बेडेओ ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

कबीर सदगुर सूर में बायाबान जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई पूम बेकार बिन संगत यो मानई।

छोड़ई जम दिया दमामा आए। कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है,

का सफल फलंत ईर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लिलाट मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना अब घट काट कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूं ते आद भगतन से ती गोष्टे जो कीने सो लाभ कबीर भांग माशली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे सबर खेलो पीसो इसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी

वीर जो तो साध पिरम की शीश काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जो तो साध पिरम की पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खर पई ना तेल। टूट डोले अंध गत हर चींत नही संत, तय नामा क्यों पाई है बेन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कह करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे

फरीदा कोठे मंडप माड़िया एतना लाए चित मिट्टी पई अतोलवी कोय ना होसी मित फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग स्तानी चित तार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण एक कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही

मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश गुनगी परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश तत्ती तोय न पल्लवे जेजल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे जां कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज हंस उड़र कोदरे पया।

ला कर गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए, फरीदा पंख परहौनी दुनी सुहावा बाग, नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज, फरीदा रात कसूरी वंडी है सुत्या मिले ना पाओ, जिन्ना नैन नींद रावले तिन्ना मिलन को आओ, फरीदा मैं जाने दुख मुझकू दुख सुबाए जग, ऊचे चढ़के देखिया ता घर घर एह अग, महला पंजवा फरीदा पू वरंगावली मंज वसूला बाग, जो नर पीर निवाजया तिना अंचना लाग, महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी

आवे जम दगन परसरा मिसर कर कुठार रग तेज हरे हो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वात्म जिन जान्यो तब करस जद गावो गुरु नानक राज योग जिन मान्यो गावे गुण वर्ण चार खड़ दर्शन ब्रह मातक सिमरंथ गुणा गावे गुण शेष सहजेबा रस आद अंतलिव लाग तुना गावे गुण महान देव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जान्यो कब करस जस गावो गुरु नानक राज योग जिन मान्यो राज योग मान्यो बस्यो निर्वैर हृदंतर सिट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे संकाद आज जिन काद जुग गए लग तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग पाताल पुरी जय कार धुन अब जन कल वखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राज योग तय मान्यो सजुग तय मान्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेतय तय मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन कौ राज अपहे भगते जन दियो कल युग प्रमाण नानक गौर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल आदि पुरख फुरमायो गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग माने योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने सुख देओ प्रीखित गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कलस जस नानक गुर नित नवतन जग छायो गुण गावे पायाल भक्त नागाद पोयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार ब्रह्मा गुण उचरे जिन हुकुम सब सिट सुवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जब कल सुजस नानक गुर सहज योग जिन मान्यो गुण गावे नवनाथ तन गुर सास समायो मां धाता गुण रवे जेन चक्र वह कहायो गुण गावे बलराव शब्द पाताल बसंतो भरथर गुण उचर सदा गुर संगर हंतो दूरबा पुरूरो अंगर गुर नानक जस गायो कब काल सुजस नानक गुर काट काट सहज समायो सवाईगे महल्ले दूजे के एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद सोई पुरख तन करता कारण करतार करण समर्थो सदगुरु तन नानक मस्तक तुम तरयो जिन हथो ता तरयो मस्तक हथ सहज आम्यो उठो छज सुर न गण मुन बोझ अगाज मारो कंटक काल गर्ज ताव तलियो बरज पंच पूत एक कार राख ले समाज जगजीतो गुरुद्वार खेले संत सार राख उन मन लेव राख निरंकार कौ कीर्त कल सहार सप्त दीप मजहार लैणा जगत्र गोर परस मुरार जाकी दिष्ट अमृत धार काल खन उतार तेमर अज्ञान जागे दर्श द्वार ओए जो सेवे शब्द सार गाखड़ी बिकमकार ते नर पाव उतार किए निरपार सत संगत सहज सार जागी ले गुर बीचार निमरी पूस दीव परम प्यार कौ कीर्त कलस हार सप्त दीप मजहार लैणा जगत्र गुर परस मुरार तय तो दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बथार साधक सिद्ध सो जान जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रह जगत्र जाल पद्म विचार कल्प तार रोग बेदार संसार ताप निवार आत्मा तृप्त तेरे एकले अवतार कौ कीर्त कलस हार सप्त दीप मजार लैणा जगत्र गोर परस मुरार तय ता हदरत पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजगर जिन किया उन्मान हर घर दर्श समान

पैर समाध सना हो, ज्ञान गए आसन चढ़यो, धर्म तनक कर गयो, भगत सील है सर लड़यो, पै निरपो हर अटल मान, शब्द गुर ने जा गड्यो, काम क्रोध लोभ मोह अवत पंच दूत बिखंडयो, पलो पुहाल तेजो तना निरपतनाथ नानक बार, गुर अमरदास सच सल पान, तय दल जितो इव युद्ध कर, कण हर बूंद बसो रो मावल, कुसुम बसंत गणंत न आवै, रस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे, उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के।

जंपो गुण बेमल सुजान जन केरे आमे नाम जा को फुरिया। इन सदगुरु से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर थरिया हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे कब काल ठकर हर दास तने गुरु रामदास सार अपार परे छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परया ते पीवे संत करे मन मज्जन खुब जिनो सेवा करिया तिन पाओ निवार अन पय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे कब काल ठगर हर दास तने गुर राम दास सार अपार परे सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद फल पंच करे कब काल ठगर हर दास तने गुरु रामदास सार अपार परे आन पो उन्मान अगले लागी पारस फेटिया सहज करे सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिट्या जिन मात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे कब काल ठकर हर दास तने गुरु रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार निद अंतर तारयो दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सदगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उच्चरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश मिलत सा उपजै

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तै अपाय अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नामृद नाम निधान रिद सिता की दासी। तय सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

सदगुर शब्द अथाहो अमे थारा रस गुट मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजो नहीं संभव्यो जगत गुर भजन तरायो अवगत अगोचर अपरपार मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चर तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निधान भगते पौतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिहे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पाए सतगुर शब्द

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे पुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सभी ऊपर करी कृपा सहयुग जन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लेना थाप जोत जगतारी।

सत्संगत परमानंद गुरु मुख मत्या श्री गुरु साहेब सभी ऊपर मन भय क्रम सेविगे सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोड़ सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महा मग पई इंकनी शब्द चंतकार खेल पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कौ कौन मेड़ सकै ईस बम ज्ञान ध्यान हरत हीए चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो आराम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेद तरयो हर नागस हरयो नख बदार जियो संख चक्कर गदा पद्म आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन पुंद दसन प्रिया सिद कंठ मार मुकट सीस मोर पंख चाहे जियो बेव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया अपने उशाए जियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहे आसमाए सुते सिद्ध रूप तरयो सहन कै साहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बले शलन सबल मलन भगत फलन कान कुर नेकलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रावण दुर्त दवन सगल पवन कुसर करण सर्ब पूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मश कश हो ब्रहा जमना के कूल खेल खेल्यो जिन गिंद जियो नाम सार ही ए तार तब कार मन गए अंत सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो पुर कया मान निज निधान सत जान मंत्र एह निस्बासर होए कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सुषाड़ तोह होमे का फंद काट साध संग रत जी।

आग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुद को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिने आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्यद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कलजुग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जोग कब को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन स गुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुरु रामदास को नाम निधान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोक प्रगस। देखत दर्श पटक परम भजत सुख परहर सुख सहज बेगस। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर साचो तख्त गुरु रामदास। तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिधर सिद्ध न छोडे सत। दान बडो अतवंत महाबल सेवक दास कहो त्यो तथ। ताहे का परवा काहू की जाके बसीस तरयो गुरगत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फिरे। अविनाशी अचल अजो नहीं संभव पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुरु नानक भगत करी एक मन तन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में।

ना पदार्थ पाया अतुट परे पंडार, हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार। नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार, गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश। इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए, एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए। जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए, बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए। जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए, सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए। नानक भगति रत्या हर हर नाम सुमाए, मानव चंचल मत है अंतर।

न पाए मन मुख से ती संग करे मोह काल खदाग लगाए मोह काले तिन लोभियां जसन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की मल उतर है जन नानक हर गुण गाए तुर हर प्रभ करतै लिखिया सो मिटना ना जाए जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राए चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हथ ना कथा उपाय बार पाखंड सब कर्म कर है मन हिरदय कपट कमाए खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खरोआ आए नानक की प्रा बेनती हर भावे बख्श मिलाए मन आवन जान ना सुजई ना सुजे दरबार माया मुहे पलेटिया अंतर अज्ञान गुबार तब नार सुता जागया सिर डंड लगा बहु भार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोह द्वार नानक आप हुए उदरे तब कुटुंब तरे परवार शब्द मरे सो मोआ जापे गुर प्रसादी हर हस्त हपे हर दर्ग है गुर शब्द संजापे बिन शब्द है मोआ है सब कोए मन मुख मोआ अपना जन्म खोए हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रव है अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद।

मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे पार जिसे उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार दूजी चोड़ कोवाटड़ी एक सौ चित लाए दूजे पावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करन वणजारिया सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार पंथा प्रेम ना जानई कूली फिरे गवार नानक हर बिसराए कै पौंदे नरक अंधियार माया मनोना भी।

दूर। कथ न कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

को कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूरमो पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार। कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल बढ़ात्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सर करह पार।

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण वखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे।

तिथै भगत वसै के लो करह आनंद सचा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड।

जात पहारा तीर्ज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना।

जप तप संयम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति आखिए करते का होए बिचारो, तित कर गावहो सोहेला सिबरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरपहो का सोहेला, हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालिया न देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिसदा ते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावहो तेल, देहो सजन आसीसड़िया जो होवे साहिब स्यों मेल। कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन। राग आसा

बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिले है अंक सह लिड़िया, मिलके करे कहानियां समर्थ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवै पत उगवै गुर बचनी पौ खाए। नानक सच्चा पात साहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी होमै मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थी गुरमुख शब्द समाए। रहाओ केता आखण आखी आखण तोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता को सोए, जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए। जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खेलाए, संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए। ज्योतिष पाना सो थिए अवर ना करना जाए, गुरमुख वस्त वेसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सबदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए, पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेण। रहाओ ऊंचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार, गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार। तिरपद कर्म कमाई है आसंदेसा होए, क्यों गुरबिन तृप्ति छुटसी सहज मिलया सुख होए। निज कर महल पछाणिए नदर करे मल धोए, बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवर ते आस, नानक देख दिखाई है हो सत बलिहार जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना उठी है पिर बिन दुख ना जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगह झूठ खुआर। रहाओ आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान।

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे हे मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जिया।

जो दिसै चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगै जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिया पूरै तोल कीमत किनै ना पाई है रिदमान कमोल अमोल भाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जम जम दारन लग गई यो भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़े कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल न उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगतना।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेते हो सो अवगुणे आवे जाए, जिस सतगुर पुरख ना भेटे हो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउं कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंगी है, दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे संभाली रहाओ। तू भरपूर जानिया मैं दूर, जो कश करी

पास श्री राग महला पहला कर पंजवा अशल शलाई नह शल नह काउ कटारा कर सके ज्यो साहेब राखे त्यों रह इस लोभी का जियो टल पल बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ पोथी प्राण कमाई है पौवटी ए तन पाई है सच बूझण आण जलाई है एहो तेल दीवा इं जलै कर चानन साहेब तौ मिलै रहाओ इत तन लागे बाणिया सुख होवै सेव कमाणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाई है कहो नानक बहा लुड़ाई है। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाँ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनों दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए नाओ त्याई है नाओ मंगी है नामे सहज समाए मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्नी गुरमुख चाखिया सहज रहे समाए रहाओ जिन्नी सतगुर सेवया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सही ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते वरले संसार हाँ मैं ममता मार कै हर राख्या और तार हाँ तिल कै बलिहारना जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुखिए चहु जुगी जिन्ना नाम है खोटिया पार गुर मिलिया नाम पाई है चूकै मोह प्यास हर सेती मन रव रया करी माए उदास जिन्ना हर का साध आया हाँ तिन बलहार जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास श्री राग महला तीजा बहु पेह कर परमाई मन हृदय कपट कमाए हर का महल ना पावई मर विष्टा माए समाए मन रे गृही माए उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतया गत मुक्त करै मैं पाए हर का नाम त्याई है सतसंगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करै नव खंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद फिरै ओना तिल ना तुमाए जो प्रभावै सो थीऐ अवर ना करना जाए जन नानक जीवै नाम लै हर देवो सहि सुभाए श्री राग महला तीजा कर पहला जिस ही की सिरकार है तिस ही का सब कोए गुरमुख कार कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच

से विष्टा महे समाए, तिनका जन्म सफल है जो चले सतगुरु पाए। कुल उधारै अपना धन जने दी माए, हर हर नाम ते आई है जिसनों कृपा करे रजाए। जिनी गुरमुख नाम ते आया विचों आप गवाए, ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए। नानक आए से प्रवान है जिन गुरमति हर ते आए। श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है गुरपूछ करै व्यापार। हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार। भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करै, गुरमुख नाम ते आए रहाओ। हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार। पाखंड भगत ना हो वई दुबदा बोल खुवार। सो जन रलाया ना रलै जिस अंतर बिबेक विचार। सो सेवक हर आखियै जो हर राखै उर तार। मंतन सौपे आगै धरे हमै विचों मार। तन गुरमुख सो प्रवान है जे कदे ना आवै हार। कर्म मिलै ता पाईऐ मिण कर मैं पाया ना जाए। लख चौरासी तरस दे जिस मेले सो मिले हर आए। नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा, सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदर नाम तिहाई है सहजे नाम समाए। अंदर रचै हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। भाई रे जग दुखिया दूजै पाए, गुर सरनाई सुखल है अंदर नाम ते आए रहाओ। साचे महल न लग गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिया हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञाना दे राजाए। मनमुख मैले मल भरे होमै तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल न उतरै मर जमै होए खुआर। धातर बाजी पलच रहे ना उर वार ना पार। गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा, मनमुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए। शब्द ना चीनै सदा दुख हर दर गै पत खोए। होमै गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मानो अहनिस पूर रही नित्यासा, सतगुर से मोह पर जलै करी माए उदासा रहाओ। गुरमुख कर्म कमावै बिकसै हर बैराग आनंद। अहनिस भगत करे दिन राती होमै मारने चंद। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर पाया सहजानंद। सो साधु बैरागी सोई हिरदै नाम वसाए। अंतर लागना तामस मूले विचों आप गवाए। नाम निधान सतगुरु दिखा लिया हर रस पिया आगाए। जिन किने पाया साध संगति पूरै भाग बैराग। मनमुख फिरै न जाने सतगुरु होमै अंदर लाग। नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग। श्री राग महला तीजा, कर ही शब्दा पाईऐ अंतर सावत होए। खिन खिन नाम संभालीऐ गुरमुख पावै कोए। नाम निधान अखुट है वडभाग प्राप्त होए। मेरे मन तज निंदा हो मैं हंकार, हर जियो सदा त्याए तू गुरमुख एकंकार रहाओ। गुरमुखा के मुख उजले गुर शब्दी विचार। हलत पलत सुख पाएंदे जप जप हृदय मुरार। घर ही विच महल पाया गुर शब्दी विचार। सतगुर ते जो मोह फेर है मथे तिन काले। अंदन दुख कमाम दे नित जोहे जम जाले। सुपने सुख ना देखनी बहु चिंता पर जाले। सबना का दाता एक है आपे बस करे। कहना किशु ना जा वई जिस पावै तिस दे। नानक गुरमुख पाई है आपे जाने सोए। श्री राग महला तीजा,
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਇਹੋ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਤਾਵ ਤਾਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ ਮਹਿਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ ਰਹਾਉ। ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਤਨ ਅੰਧ ਹੈ ਤਿਸਨੋ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ, ਬਹੁ ਜੋ ਨੀ ਭਾਉਂਦਾ ਫਿਰੈ ਜੋ ਸੁਣੈ ਕਰ ਕਾਉ। ਗੁਰਮਤੀ ਕਟ ਚਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਖਿਆ ਅੰਧ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ, ਲੋਭੀ ਅਨ ਕਉ ਸੇਮ ਦੇ ਪਲਵੇਦਾ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਅੰਦਰ ਪਚ ਮੋਏ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਬਾਜਹੋ ਗੁਰੂ ਅਚੇਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਮਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਉਭਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਚੌਥਾ ਪਦ ਪਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਾਇਆ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਪੋਤੇ ਜਿਨ ਕੈ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾਏ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮਤ ਸਾਚ ਰਹਾਓ ਸਾਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਾ।

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो। जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिष पावै सो होए। जिहा सतगुर कर जानिया तेहो जिहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए। नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझे नाही, अनदन दुख विहानी। मन मुखे अंद न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै, ता हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचहु मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जमन मरना, मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुरु की सेवा या तो सुखाली, जो इच्छा है सो फल पाए। जात सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुरु की शरणागति, हों तन कै बल जाओ। दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, से जय कंतना आवई, नित नित होए खुवार। पिर का महल ना पावई, ना दिस घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए। संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए। रहाओ गुरमुख सदा सुहाग।

अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चले दुख ना पावे कोए। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना अपना तन मन अगे धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई।

दूजे पाए प्यार, माया जेवड़ दुख नहीं, सब भव थके संसार, गुरमति सुख पाईए सच नाम और धार, जिसनों मेले सो मिले हाँ तिस बलिहारै जाओ, ए मन भगती रतिया सच बाणी निज थाओ, मन रते जह वरती हर गुण सच्चे गाओ, नानक नाम ना विसरै सच्चे माहे समाओ, श्री राग महला चौथा कर पहला, मैं मन तन बिरहवा त्यागला, क्यों प्रीतम मिले कर आए, जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखिया दुख जाए, जाए पुछा तिन सज्जना प्रभ कित बिद मिले मिलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, हम मूर्ख मुक्त शरणागति कर कृपा मेले हर सोए, रहाओ सतगुर दाता हर नाम का प्रभ आ मिला वै सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जे वड़े अवर ना कोए, हाँ गुर शरण आई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए, मन अठकने ना पाया कर उपाव थके सब कोए, सहस सियाण पकर रहे मन को रह रंग ना होए, कूट कपटकने ना पायो जो बीजे खावे सोए, सबना तेरी आस प्रभ सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं दर गुरमुखा नो साबास, बिख पाओ जल डुब दे कढ ले जन नानकी अरदास, श्री राग महला चौथा नाम मिले मन तृप्ती है बिन नामै त्रिक जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास, हाँ तिस विटो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास, मेरे प्रीतमा हाँ जीवा नाम ते आए, बिन नामै जीवन ना थी है मेरे सदगुर नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोल करतन है पूरे सदगुर पास, सदगुर से वह लग्या कड रतन दे वह प्रगास, धन वड भागिया जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सदगुर पुरख ना भेटियो से भागहीन वस काल, ओए फिर जोन पवाई है विच विष्टा कर विकराल, ओना पास दवास ना पिटिए जिन अंतर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सर वडभागी ना वै आए, उन जन्म जन्म की महल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लिव लाए, श्री राग महला चौथा गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरा हीर मिल बेदया रंग चलूलै नाए, मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावै सोए, रहाओ मन रंग हो वड भागी हो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यों हम सतगुर कै बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लभई लख कोटी कर्म कमाओ, बिन भागा सतगुर ना मिले घर बैठिया निकट नित पास, अंतरा ज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस, बिन सतगुर भेटे कंचन ना थी मनमुख लोह बूढ़ा बेड़ी पास, सतगुर बोहे थार नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर कै पाने जो चले विच बोहित बैठा आए, तन तन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर ले मिलाए, श्री राग महला चौथा हाँ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाओ, जिन्नी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराओ, कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं परम मिलने का चाओ, मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए, हाँ सतगुर विटो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए, रहाओ होए निमाणी टह पावा पूरे सतगुर पास, निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे साबास, हाँ गुरसा लाहे नर जऊ मैं मेले हर प्रपास, सतगुर नो सब को लोईदा जेता जगत सब कोए, बिन भागा दर्शन ना थी है भागहीन बैरोए, जो हर प्रपाणा सो थिया तुर लिखिया ना मिटै कोए, आपे सतगुर आप हरो आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है
नानक जल जलै समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस आत भला, कित बिद मिलै रस खाए। जाए पुछो सुहागणी, तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओए वे प्रवाह ना बोलनी, हाउ मल मल तोवा तिन पाए। भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है दुख कढै हो मैं मार। रहाओ गुरमुखियां सोहागणी, तिन दया पई मन आए। सतगुर वचन रतन है, जो मन्ने सो हर रस खाए। सेवड़ भागी वड़ जानी है, जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वण तिण सबत है, भागहीन नहीं खाए। बिर सतगुर पलै ना पवै, मनमुख रहे बिललाए। ओए सतगुर आगै ना निवै, ओना अंतर क्रोध बिलाए। हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए। आप दया कर देवसी, गुरमुखे अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़ै फिर आथ वै, रैन सबाई जाए। आव घटै नर ना बुझै, नित मूसा लाए टुकाए। गुण मिठा माया पसरिया, मन मुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए। पुत कला तमो बिख है, अंत बेली कोई ना होए। रहाओ गुरमत हर लिवे उबरे, अलिप्त रहे सरनाए। ओनी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पद पाए। गुरमुख दर गए मनिए, हरे आप गए गलाए। गुरमुखानो पंथ प्रगटा, दर ठाक ना कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मानो, नाम रहन लिवलाए। अनहद तुनी दर वज दे, दर सच्चा सोबा पाए। जिनी गुरमुख नाम सलाहया, तिन्ना सबको कहे साबास। तिन की संगत देह प्रभ, मैं जाचक की अरदास। नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा, जिन अंतर नाम प्रगास। श्री राग महला पंजवा। घर पहला। क्या तू रता देख कै, पुत्र कलत्र सिंगार। रस भोगै खुशियां करै, माणै रंग अपार। बहुत करै फुरमायसी, वरतै होए अफार। करता चेतना आवई, मनमुखे अंद गवार। मेरे मन सुखदाता हर सोए, गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए। रहाओ कपड़ भोग लपटाया, सोए ना रूपा खाक। हैवर गैवर बहु रंगे, किए रथ या थाक। किसी चेतना पावही, बिसरिया सब साक। सिरजन हार भुलाया, विणना वैना पाक। लेंदा बद दुआए तू, माया करै अकत। जिसनों तू पतियाईंदा, सोसन तुझे अनित। अहंकार करै अहंकारियां, व्यापिया मन की मत। तिन प्रभ आप भुलाया, ना तिस जात ना पत। सतगुर पुरख मिलाया, इको सज्जन सोए। हर जन का राखा एक है, क्या मानसा हूं मैं रोए। जो हर जन पावे सो करे, दर फेर ना पावे कोए। नानक रता रंग हर, सब जग में चरण होए। श्री राग महला पंजवा। मन बिलास बौरंकणा, दृढ़ पूर खुशियां। छतर तार बादशाहियां, विषय से परियां। भाई रे सुख सा संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख विधात। दुख सह समट गया। रहाओ जेते थान थनंतरा, तेते पावे आया। तन पाती वड भूमिया, मेरी मेरी कर परिया। हुक्म चलाए निसंग होए, वरतै या फरिया। सबको वसगत कर लयो न।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल, ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल, जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे। जिथै जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे, फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे। कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए, चारे कुंडा पाल कै आए पया सरनाए। नानक सच्चा है पात साहे, डुबदा लिया कढ़ाए। श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना का सवार नहार, माया काम व्यापिया समझै नाही गावार। उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार, अंधे तू बैठा कंदी पाहे। जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे। रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार, लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार। जा होवा हुक्म किरसान दा ता लुण मिणिया खेतार। पहला पहर धंधा गया दूजे पर सोया, तीजे चाख चखाया चौथे पोर पया। कदी चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया, साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान। जिस ते सोजी मन पई।

कीमत कह ना सकाओ, नानक कहो प्रभु मया कर, सच देवो अपना नाओ। श्री राग महला पंजवा। नाम ते आए सो सुखी, ते समुख उजल होए, पूरे गुर ते पाई है प्रगट सबनी लोए। साध संगत कह घर वसै, एको सच्चा सोए, मेरे मानु हर हर नाम ते आए, नाम

जातो बिनस निदान, जाके हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेणका अपना आप त्याग, उपाव सियानत सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवै भाग, तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रव आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हम मैं ताप, नानक कहो गुर भेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का एको रखन हार, एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते शरण आई सदा सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगले उपाव त्याग। गुर पूरा आराध नित एक सकी लिवलाग रहाओ, एको पाई मित एक एको मात पिता। एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता, सो प्रभु मनो ना विसरै जिन सब किश वस कीता। घर एको बाहर एको थान थन अंतर आप, जी जंतो सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रवेक है दूजा नाही कोए। जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए, गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा। जिन्ना सतगुर स्यो चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए। सर्व सुखा सुखी उपजहै दरगह पैंदा जाए रहाओ। जन मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटिया गुर दर्शन देख निहाल, थान थन अंतर रव।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवां, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरियां, पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया तजिया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भक्त जना को राखदाया।

माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोई रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार, सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार। बालक बिरद ना जानिया निचल तिस दरबार, जो मंगिया सोई पाईया नेदार आयादार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत, एक मन एक ते आईऐ मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात, सदा सदा आराधी है।

अवन्य पूरव राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोय ना रखन हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया।

कर संगत नित साध की गुरचरण चित लाए रहाओ। नाम निधान प्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हम मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मंतन हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिले वडियाईया दरगे पावै थाओ। करे कराए आप प्रभु सब किछ सही हाथ, मारा पे जीवालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्ब कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेश है बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक।

सहजे शिव तीर्थया पवजल उत्तरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाईए साधु तूर लूक मावै किस्ते जां वेखै सदा हदूर थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सचे सच्चा थान सची कुदरत तारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिए सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्यम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सोपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी नगर ने

सतगुरु की सेवा लाग, जो दिसै सो विलसना, मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कुकर हर काया तावै दै दिस जाए, लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया, फिर जोनी पाए, माया जाल पसारिया पितर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए, जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए। अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार, जिसनो रखै सो रहै समर्थ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे, नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां, घर दूजा। गोयले आया गोयली, क्या तिस डंफ पसार। मुहलत पुन्नी चलना, तू संभल कर बार। हर गुण गाओ मना, सतगुर से प्यार। क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ, जैसे रैन प्राहुणे उठ चल सह प्रभात। क्या तू रता ग्रत स्यों, सब फुल्ला की बागात। मेरी क्या करे, जिन दिया सो प्रभ लोड़। सर पर उठी चलना, छड़ जासी लख करोड़। लख चौरासी परम त्या, दुलभ जन्म पायो। नानक नाम संभाल तू, सो दिन नेड़ा आयो। श्री राग महला पंजवां, तिचर वसै सुहेलड़ी। जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया तां तनखा कूराल। मन बैराग पया, दर्शन देखणै का चाओ। धन सो तेरा थान रहाओ, जिचर वसिया कंत घर। जियो जियो सब कहात, जां उठी चलसी कंतड़ा। ता कोई न पुछे तेरी बात, पेयड़ै सो सेव तू साहुरड़ै सुख वस। गुरमिल चाजिया चार सिख, तुद कदे न लगे दुख। सबना साहुरै वंजना, सब मुकलावन हार। नानक तन सोहागनी, जिन सह नाल प्यार। श्री राग

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हाँ तुद विटो कुरबान तेरे दर्शन कहो बलिहार न तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरत्या दरगह बैसन जाए करते हथ वडे आईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करन हार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणी है सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुरते बाहर किश

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनों वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े।

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पर्दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत।

गणत गण आवने आईया सुभा वे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ प्रलावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन है नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ सबदरती मन वेदया हो सतबलिहार जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पिरी सालू नौ तनौ साचो मरै ना जाए।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम सदिए तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिख होए अवगण त्याग समाइए गुरमत पूरा सोए रहाओ विणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लहै कर अपने चलै कारज सार वणजा रिया स्यों वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योतिया पार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्लै पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सच नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ।

आर संत सवा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवे खिन जाए शब्द पछाण रव रहे ना तिसकाल संताए साहेबा तोल ना तोलिए कथन ना पाया जाए वापारी वन जा रिया आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै रजाए पूंजी साची गुर मिलै ना तिस दिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी साचित राजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तो लाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाईऐ बिनहर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिलै पाईऐ रतन विचार मन दीजै गुर अपने पाईऐ सर प्यार मुक्त पदार्थ पाईऐ अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास कोय रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए सफलो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए लाल

सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेविए गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईए पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम ना छुटिए गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारिए पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़िए पी विकसै असनेह जल मैं जियो पाए कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुख कणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चातरक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देहे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तिरपमन सो जी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंखनू जो चुग दे सर तल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिलै सो मिलै जाए सचा पिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजाए हो मैं मैल ना जाए सोहंग आप पिछाणिय शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पिछाणिय अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मनमुख सो जी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवरना दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख भुले भुलाई है भूली ठौर ना काए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए ज्ञान पदार्थ खो

आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटुंब मोहे लोभाना, चल दिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिस दी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अनदिन भगत करै दिन राती, हौं मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजाय, हमें तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उर तार। प्रभ मेरा सदा निर्मला।

मन निर्मल पाया जाए, नाम निदान हर मन वसै, हों मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया, हों सत बलिहारै जाओ, अपने मन चित कह कहाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरे आप ना जाई, हर जियो भगत मच्छर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला।

श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच उगै गुर पाए हर रस पीवै सहज रहै उड़ै न आवै जाए निज कर

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वसया मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पर नहीं चल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिरके अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्दे हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साला ही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेटे भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे है निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन कोई परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै तांगत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मैं नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से तीच तलाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नो सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गावया थाए पवै बिन सहजे कथनी बाद सहजे ही भक्ति उपजै सहज प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजे जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाद लगाए सहजे ही गुणी उचरै भक्त करे लिवलाए शब्दे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया सशरण आई पाए सहजे ही हर नाम वसया सच्ची कार कमाए सेवड भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए मन

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग, गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए। चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया, तीर्थ गमन करे। खटकर में खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चलै हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमह प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, गृहस्थी ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देवै दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, काट ना किन्ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुरग मछ पयाल जियो, हौं वारी हौं वारण, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाजना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमों कुथियां फिर निमाणिया, मैले वेस्त ना कामनी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्ना नो मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सही आसे सुहागणी, जिन सह नाल प्यार जियो, जिन्ना भाणे का रसाया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानी है, जो सब सह ले मिलाए जियो, सतगुर मिलिया फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करे निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिया, सतगुर बाजना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौं सतगुर विटों घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवकी पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो, सब संजम रहे सियाण पा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, सब संजम रहे सियाण पा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो।

तन जो बन सो चेत हरका नाम ना चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुटे जित हरका नाम ना चेत प्राणी बिकल भया संग माया तन सो रता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया धर्म से तीवा पार ना की तो कर्म ना की तो मित कहो नानक तीजे पहरे प्राणी तन जोबन सो चेत चौथे पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जां जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जां जम पकड़ चलाया झूठा रतन हुआ दुआले खिन मैं पया पराया साई वस्त प्राप्त होई जिसे लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुनिया खेत

मात पिता सुत ने हो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कै मन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनै वन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए चौथे पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही वन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैन अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहया वन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाने आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै वन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तसे न जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे।

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै। नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यों मरै। मिल मेरे प्यारे प्राणे आधारे गुण साध संग मिल गावै। नानक के स्वामी धार अनुग्रह मंत्र अंक समावै। डखना सो हंदड़ो हबठाए कोय न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट। नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पिया पार। संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास। पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो बिसारी है निमख नहीं टारी है। गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवै जन्म नहारी है। नानक की बेनंती प्रपै कृपा कर पव जल तारी है।

सुंदर स्वामी धाम भगतै विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तने गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा जो तौ कीने अपने तिन्ना को मिलियो हे आपे ही आप मोयो हो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौण ना माया होया कर गै लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो ना तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ ना जाय अकथ स्वामी सत कह जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोई जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोए जो मोहे माया चितलाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिने अवर ना कोए हर गुर शरण आई पाई है मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना मिन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हम

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मोलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवे है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर हर एक सहदा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर कर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखम तार। सलोक महला पहला। दाती साहेब संधिया क्या चलै तिस नाल एक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलायका दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनो जो ले छड़ाई। सलोक महला पहला। फकड़ जाति फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आपो जे को पला कहाए। नानक ता पर जापै जां पत लेखै पाए। महला दूजा जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यो तिन पिछे सब जगत छुटीवे। सलोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा, गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जामन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझै ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राज दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहेब कै रंग रह, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक साहेब प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाए। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच है, करमी पल्लै पाए। पौड़ी

दरखड़िया नाल खसमै रतिया माने सुख रलिया होंदे तान नितानिया रह निमाननिया नानक जन्म सकार था जेतन कै संग मिला पौड़ी। तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जल वताएंदा आपे विसे बाल तू आपे कमल अलिपत है सह हथां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुद्दों बाहर किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जान।

आपो दूजे लागो खसम विसारिया, नानक बिन नावै सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा, गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया, तिन विचों परम चुकाया। राम नाम हर कीर्त गाई, कर चानन मग देखाया। हौ मैं मार एक लिव लागी, अंतर नाम वसाया। गुरमति जम जोहे ना साकै, साचै नाम समाया। सब आपे आप वरतै करता, जो पावै सो नाए लाया। जन नानक नाम ले ता जीवै, बिन नामै खिर मर जाया। पौड़ी जो मिलिया हर दी बाण स्यों, सो सबनी दी बाणी मिलिया। जिथै ओह जाए तिथै ओह सुरखरु, उसकै मुह डिठै सब पापी तरिया। ओस अंतर नाम निधान है, नामो परवरिया। नाओ पूजियै नाओ मनियै, नाए किल विख सब हिरिया। जिनी नाम धियाया, एक मन एक चित, से अस्थर जग रहिया। श्लोक महला तीजा।

पाए, जब तब संयम भाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमरत सब किलविख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुआर। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सिओ, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले न विछड़ै, सहि समावै सोए। महला तीजा। सो भगवती जो भगवंत जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवित मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा। अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल धोवै मन की जूठ ना जाए। सत्संग स्यों बाद रचाए, अंदिन दुखिया दूजै पाए रचाए। हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी त्याया से कड़न सवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त आगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन का होवा कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथै उथै मुख उजले, हर दरगह पैंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै, सो सिर दीजै डार। नानक जिस पिंज

जियो दुख पंजन निदान्या मोले निरपौ निरवैर अथाह अतुले अकाल मूर्ता जूनी संभव मन सिमरत ठंडा थीवा जियो सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायण गुरमुखे अमृत पीवा जियो दुख सुख प्यारे तुद ते आई एह सुमत गुरु ते पाई नानक की धर तू है ठाकर हर रंग पार परिवा जियो माज महला पंजवा तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया तन मूर्त चसे पल घड़िया तन सो ओए संजोगा जियो उद्यम करत मन निर्मल होवा हर मार्ग चलत परम सगला खोया नाम निदान सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जियो अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कथी तै आप वखाणी गुर कहया सब एको एको अवर ना कोई होएगा जियो अमृत रस हर गुरते पिया हर पैनन नाम पोजन थिया नाम रंग नाम चोज तमासे नाव नानक कीने पोगा जियो माज महला पंजवा सगल संतन पै वस्त एक मांगो करो बिनंती मान त्यागो वार वार जाई लख वरिया देहो संतन की तूरा जियो तुम दाते तुम पुरख बिदाते तुम समरथ।

संत रसन हर नाम वखाना, जल थल नीर भरे सर सुबर, बिरथा कोय ना जाए जियो, दया तारी

हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नजर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संतां सेती रंग ना लाए, साक्त संग विकर्म कुमाए, दुलब देह खोई अज्ञानी, जड़ अपनी आपो पाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावै, राखो सरमिया साड़ी जियो, माज महला पंजवा, चरण ठाकर के हृदय समाने, कल कले सब दूर पयाने, सात सुख

माज महला पंजवा सबे सुख पय प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहे मेरा कड़कड़े अंतर वर्त।

दिसै कोई दूत दुश्मनों सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किछु ना जापै अपने संतां नू आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवां सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाइयै सा धरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुरबाणो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जी वै जन तेरे सच शब्द मन माणो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरे तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवां रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला घड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलता थाई।

ब्रह्म जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंदर जागी, बहा पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना। चरण कमल भगता मन मुठे विन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछे नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाई है जे सिमरत वार ने चल पाई है, नानक प्रभ हो दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगह महल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मन पति आवणिया। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावने आ, अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावने आ रहाओ। ना को मेरा हों किसकेरा साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावने आ। हुक्म पछाण सो हर गुण वखाण, गुर कै शब्द नाम निशाण सबना कादर लेखा सच्चै। छूटस नाम सुहावने आ, मनमुख पूला ठौर ना पाए जमदर बद्दा चोटा खाए। बिन नामै को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवने आ, सागत कूड़े सच ना पावै दुबदा बांदा आवै जावै। लिखिया लिखना मेटै कोई गुरमुख मुक्त करावने आ, पे येड़ै पिर जातो नाही झूठ विछुन्नी रोवै ताही। अवगण मुठी महल ना पाए अवगण गुण बखसावने आ, पेयड़ जन जाता प्यारा गुरमुख बूझे तत विचारा। आवन जाना ठाक रहाए सच्चा नाम समावने आ, गुरमुख बूझे कथ कहावै सच्चे ठाकर सचो पावै। नानक सच कह बेनंती सच मिलै गुण गावने आ, माज महला तीजा कर पहला। कर्म होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। हौ मैं मारस दा सुख पाया माया मोह चुकावने आ, हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारने आ। गुरमती प्रगास हुआ जी अंदर हर गुण गावने आ, रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए तावत राखै ठाक रहाए। गुर की बाणी अंदर गावै सहजे पद करावने आ, इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिलै ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द वजावने आ, सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई। आन दिन सदा रह रंगराता दर सच्चा सोजी पावने आ, पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलाणी। अग्ञानी अंदा मग न जाने फिर आवन जावने आ, गुर सेवा ते सदा सुख पाया हौ मैं मेरा ठाक रहाया। गुरसाखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावने आ, हौ मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया। गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवने आ। जीवन मरना सब तो दैताई जिस बख्शे तिस दे वड़ियाई, नानक नाम ते आए सदा तू जम्मन मरण सवारने आ। माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा, बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख होवै सोई बूझै गुण कै गुणी समावने आ। हौ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावने आ, जो सच लागे से अंदन जागे दर सच्चै सोभा पावने आ। रहाओ आप सुनै तै आपे वेखै, जिसनों नदर करे सोई जन लेखै। आपे लाए लए सो लागै गुरमुख सच कमावने आ। जिस आप पुलाए सो किथे हथ पाए, पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए। जिन सतगुर मिलिया से वडभागी, पूरे करम मिलावणिया। पेयड़ तन अंदन सुती कंत विसारी अवगण मुत्ती,
ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਪੇਈਅੜ ਐਸੁ ਦਾਤਾ ਜਾਤਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ, ਸਤ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ, ਜਿਸਨੋਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਕਿਲਬੇ ਕਾਠ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਗਿਣਦੀ ਐ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਐ ਤੀਐ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੈਂ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਜੋ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ, ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੁਭਾਇਆ। ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਭੂਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਰੰਗਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗਚਾਰੇ ਜਾਤੇ। ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ।

माया मोहे जोहे जम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सही सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजे पाए दुख पावने आ। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोता। गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावने आ। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई। नानक नाम गुर भगती पाई है, गुर चरणी चित लावने आ। माझ महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही। सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन। गुरमत मन वसावने आ। हाँ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावने आ। जो हर सेवै से सदा सोहै, शोभा सुरत सुहावण्या। राओ सब को तेरा भगत कहाए, से भगत तेरे मन पाए। सच बाणी तुदै सालाहन, रंग राते भगत करावण्या। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिले ता चूकै फेरा। जा तुद पावै ता नाए रिचावै, तू आपे नाउ जपावण्या। गुरमत्ती हर मन वसाया, हरक सोख सा मोह गवाया। एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावण्या। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौनिद नाम वस्या मन आए। पूरे भाग सतगुर पाया, सब दे मेल मिलावण्या। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता। तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावण्या। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही। एक सस्यों मन रहा समाए, मन मनै मनै मिलावण्या। गुरमुख होवै सो सा लाहे, साचे ठाकर वे परवाहे। नानक नाम वसै मने अंतर, गुर सबदी हर मेला बणिया। माझ महला तीजा, तेरे भगत सो है साचे दरबारे। गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रह दिन राती। गुण कै गुणी समावण्या। हाँ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावण्या। हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाँ मैं मार मिलावण्या। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई। गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावण्या। तुझ ते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाणै सोए। आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावण्या। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए। सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावण्या। शब्द विसारण।

तू आपे दुख सुख देवै करते गुरमुख हरदे खावणिया आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए शब्दे उपजय अमृत बाणी गुरमुख आग सुनावणिया आपे करता आपे भुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे लख लखावणिया।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख बन जे सदा वापारी लहा नाम सद पावने आ। आपे वथ राख आपे दे गुरमुख बन जाय के ई के। नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावने आ। माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावने आ। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावने आ। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावने आ। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावने आ। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुर हों मैं भरम चुकाया। अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावने आ। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावने आ। जम जा गाती दूजे भाए कर लाए नामो पूले दे सजाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावने आ। पेयड़ प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावने आ। पेयड़

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवां, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या, हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या, रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा, थान थनंतर तू है एको एक वरतावण्या, सगल मनोरथ

अंधकूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्णे अबनासी कह संतोट न आवने ऐथे उथे तू है रखवाला मात कर मैं तुम ही पाला माया गन्ना पुहै तिन कौ रंग रते गुण गावने क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बने अवर न जानने जिस कौ तू प्रभु पया सहाई तिस तत्ती वाव न लगे काई तू साहेब सरण सुखदाता सतसंगत जब प्रगटा बनिया तू ऊचा था हुआ पारा मोला तू साचा साहेब दास तेरा गोला तू मीरा साची ठकराई नानक बल बल जावनिया माज महला पंजवा घर दूजा नित नित दै संभालीऐ मूला मनो विसारीऐ रहाओ संता संगत पाईऐ जे जमकै पंथ न जाईऐ तोसा हर का नाम लै तेरे कुले न लागे गाल जियो जो सवरंदे साई है नरक न सही पाई है तत्ती वाव न लगई जिन मन उठाया जियो सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने हर तन जिनी संजया सही गंभीरिया पार जियो हर अमे और साइन पीवी है मोह डिठे जन कै जीवी है कार्ज सब सवार लै नित पूजो गुर के पाव जियो जो हर कीता अपना तने गुसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसदै भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस भोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारै लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हर तेरा थिर होवा सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै भंजन की शरण आया लाए अंचल नानक तारिया नु जिता जन्मया पार जियो एको अंकार सतगुर प्रसाद माज महला पंजवा घर तीजा हर जप जपे मन धीरे रहाओ सिमर सिमर गुर देओ मिट गए पै दूरे सरन आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे झूरे चरण सेव संत साध के सगर मनोरथ पूरे घट घट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे पाप बिनासन सेवया पवित्र संतन की धूरे सब छड़ाई खसम आप हर जा पई ठरूरे करते किया तपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रता सच नाए हर वेखै सदा हजूरे बारह महा माज महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम तेन दुदै ते बाहरी कितै न आवे काम जल बिन साख कुमलावती उपजै नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजन कत पाइय विश्राम जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम सर्ब सिंगार तंबूल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल ताम चेत गोविंद आराधिया होवे आनंद कणा संत जना मिल पाईऐ रसना नाम भणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा
ਇਕ ਖੈਨੁ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਣਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁਖ ਗਣਾ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਪਾਗ ਮਣਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ ਵੈਸਾਖ ਤੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰਿ ਅਵਨਾਸੀ ਉਹ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਮੋਹ ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ ਦੈ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ

हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुण मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछतानी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागणी

से पादोए नरक ना पाई है गुर रखन वाला हेत असन प्रेम उमाड़ा क्यों मिली है हर जाए मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए संत सहाई प्रेम के हों तन कह लागा पाए विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाहीं जाए जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आ गाए आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतै ना जाए प्रवण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए असु सुखी वसंदियां।

नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। माज महला पंजवा दिन रहन एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन हर पिर बिन चैन न पाईए खोई डिठे सब गैन आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देन कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैन नानक की बेनतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरे पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम आप गाद बोध किशंत ना पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज उगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोय न जाने को नाही तोलन हार मंतन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस न विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन ने मानी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्म सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगमया माओ मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मालिक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुरदीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मुयाना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मनमुख अंध प्यार, वाहिगुरु डुबा संसार। महला पहला। दस बाल तन बी श्रवण, तीसरा

क्या खादै क्या पैदा होए, जम नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास। क्या कपड़ क्या से सुखाली, कीजे भोग बिलास। क्या लश्कर क्या नेवखवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी। जाति रह क्या हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिए चखी है। सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवानी है। फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताकती। श्लोक महला पहला। जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़। दो पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे। नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए। खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाई है। तपै तैवल लाए, पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए। नानक मिठै पतरिया वेखो लोका आए। पवड़ी एक ना मरना चेत आस कने रिया, मर मर जमै नित किसै ना के रिया। अपन रह मन चेतो कहन चंगे रिया, जबरा जै नित नित मन मुख हे रिया। मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया। सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी।

कब चंदनो कब अक डालो कब उच्ची परीत नानक हुक्म चलाई है साहेब लगी रीत पौड़ी केते कह वखाण कह कह जावना वेद कह वखियाण अंत ना पावना पढ़िया नाही भेद बुझिया पावना खड़ दर्शन कह भेख किसै सच समावना सच्चा पुरख्या लख शब्द सुहावना मन्ने नाम बिसंख दरगह पावना खालक कौ आदेश ढाडी गावना नानक जुग जुग एक मन वसावना श्लोक महला दूजा मंत्री होए अठूहे आ नांगी लगे जाए अपन हथी अपने दे कूचा आपे लाए हुक्म पया तुर खसम का अति हूं तका खाए गुरमुख स्यों मनमुख अड़े डुबे हक ने आए दुहा सिरिया आपे खसम वेखे कर व्यो पाए नानक ए वै जानिए सब कित सैर जाए महला दूजा नानक परखे आप कहो ता पारख जान रोग दारू दोवै बुझै ता वैद सुजान वाट ना करी मामला जाने मेहमान मूल जान गल्ला करे हान लाए हान लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान सर संदे आगास कहो क्यों पहुंचे बाण अगे ओ आगम है वाहे दड़ जान पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम सिंगारिया करन भगत दिन रात ना रहनी वारिया महिला मंज निवास शब्द सवारिया सच कहन अरदास सेवे चारिया सोहन खसमै पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया शब्द सवारी आस अमृत पीविया श्लोक महला पहला मारू मिहे ना त्रिपत्या अगी लह ना भुख राजा राज ना त्रिपत्या सायर परे किसको नानक सचे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेह फलंग तस जनमस जावद ब्रह्म ना बिंदते सागरंग संसारस गुरप्रसादी तरह के कारण कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसमै कै दरबार ढाडी वसया सचा खसम कलाण कमल विगसया खसमो पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसया सचा सतगुर सेवनो सचा मार्ग दसया सच्चा शब्द विचार काल विधंसिया ढाडी कथया काथो शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया श्लोक महला पहला खत्यो जम्मे खते कर नित खत्या विच पाहे तोते मूल न उतरै जे सौ तोवन पाहे नानक बख्से बख्सीऐ नाहे ता पाही पाहे महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगिए सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर भालिया सच्चे पुरख्या लख सिरज निहालिया उजड़ पुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समालिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया ने डरिया डर लग गर्ब से गालिया नावो पुला जग फिरै बेता लिया श्लोक महला तीजा पै विच जम्मै पै मरै पी पौ मन मैं होए नानक पै विच जे मरै सहला आया सोए महला तीजा पैवन जीवै बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैवन

जय कारण तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ कट ही माही। पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है, भीतर होंदी वस्त न जाण है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओह ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुर।

गौड़ी महला पहला किरत पया नह मेटै कोए, क्या जाना क्या आगै होए। ज्योतिष पाना सोई हुआ, अवर न करने वाला दुआ।

तीन अवस्था कह वखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कै हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहै सुखाली, बाजी यो संसारो लब लोभ मुच कूड़ कमावै, बहुत उठावै पारो, तू काया मै रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो, सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाउ तुदी आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जाक छलिया, ता मन भला पाया, हालत

गौड़ी चेती महला पहला मुंदरा ते कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंता ता पंच चेले वस की जय रावल एह मन की जय डंडा ता जोग जुगते पावस्ता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मूंड मुडाया जे गुर पाईए हम गुर कीनी गंगा ता त्रिपवन तारण हर स्वामी एक ना चेतस अंधाता कर पटंब गली मन लावस संसा मूल ना जावस्ता एक चरणी जे चित लावै लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट कना रहाओ काया कमली हंस याना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नांगी दाजै फिर पाछा पिछतानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एकै जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे मन एको साहिब पाई रे तेरे तीन गुणा संसार समावे लखना लखना जाई रे रहाओ सकर खंड माया तन मीठी हम तो पंडो चाई रे रात अनेरी सूझ सनाही लज टूक समूसा पाई रे मन मुख करे तेता दुख लागे गुरमुख मिले वडाई रे जोतन किया सोई होआ कीर्तना मेटिया जाई रे सुबर परे ना होवे ऊने जो राते रंग लाई रे तिन की पंख होवे जे नानक तौ मूड़ा किश पाई रे गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थामो हम आए अगन बिंब जल पीते।

केते रुख बिरखा मचीने केते पशु उपाए केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए हाट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगो देखे पिछो देखे तू ते कहां छुपावे तट तीर्थाम नवखंड देखे हट पटन बाजारा लैके तकड़ी तोलन लागा कठी मैं मन जारा जेता समो

ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जे शब्द प्यास। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए। हम मैं विच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिन नाम प्यार। साची बाणी शब्द विचार, गावत रह जे सतगुर पावै। मन तन राता नाम सुभावै रहाओ। एक गावै एक भगत करे, नाम ना पावै बिन असनेह। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा उरतार। भगत करै मूर्ख आप जनावै, नच नच टपै बहुत दुख पावै। नचे टपे भगत ना होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाने, नानक बख्शे नाम पछाणे। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए। बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए। मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे दे वड्याई। गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरम करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैंगल मिकदारा, गुर अंकस मार जीवालनहारा। मन या साधु साधे जन कोए, अचर चरै ता निर्मल होए। गुरमुखे हो मन लिया सवार, हम मैं विचों तजे विकार। जो तुर राखियां नु मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणै।

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जीव वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से धनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ, आप पछाण मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सही समावे सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन मुखियंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदन भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए, गुर का शब्द ना चीने ओ फिर जो नी पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए, अंदर भक्ति रतिया हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हों मैं तजे विकार, जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा पे अड़ा दिन चार है, हर हर लिख पाया सो बावंती नार है। गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण समलै, साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया। ससरै पेयै पिर वसै कहो किद बिद पाईऐ, आप निरंजन अलख है आपे मिलाइऐ रहाओ। आपे ही प्रभ देहे मातु हर नाम ते आईऐ, वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाईऐ। हों मैं दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाइए, सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए। मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान आने, सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने। गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने, मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे। मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा, हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा, हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया, हर तत् बिचारा मत मिलीण प्रगट भई जपना मुरारा। सेव सकत मिटाइया चूका दियारा, तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित बिद पाईऐ संत जना, जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती। गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ, हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी। हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया, मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर राय है

जब गुर मिलिया तब मन वसे आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड ते आगे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै।

सारी। ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हरे आपे शब्द सुरत धुन आपे, हरे आपे वेखै विकसै आपे, हरे आप जपाए आपे हर जापे। हरे आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप पियावन हारा, हरे आप करे आपे निस्तारा।

हमन जारे राम के हर वणज करावे दे रासरे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया हर सच्चे साह मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जिह वणज हर लाया फल ते हाथन पाया। हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ देई जन नानक साहो हर सेवया फिर लेखा मूल ना लेई गौड़ी बैरागण महला चौथा। ज्यो जन्नी गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा होए तन खाड़ दे कर भोग बिलासा। त्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गोसैया। जान की उपमा तुझे वडैया रहाओ मंदिर कर आनंद हर। हर जस मन पावै सब रस मीठे मुख लगै जा हर गुण गावै हर जन।

हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाए दा आपे वरताई। लाला हट विहाजिया क्या तिस चतराई, जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई। जन नानक हर का दास है हर की वड्याई, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा। किरसानी किरसान करे लोचै जियो लाए, हल जोतै उद्यम करे मेरा पुत धी खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिडाए, मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम। गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम रहाओ। लै तुरे सौदागरी सौदागर धावै, तन खट्टै आसा करै माया मोह वधावै। त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावै, बिकसन चै हटवाणियां बै हट कमाए। मो झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए, त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए। एहो माया मोह कुटुंब है पाए दूजै फास, गुरमति सो

उसी मन अनरस लाया, हर प्रभ चेतना आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयालो, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नहीं, किस ढंग ना मेरा, क्या मोहलै बोलै गुण बिहून, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन कौ पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न पोगाणी, जिंदिए सो चेतना आवई, पशु हों कर जानी। सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करै, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हट विहाजिया, हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागण महला चौथा, ज्यो जननी सुत जन पालती, राखै नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार। त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार। मेरे राम हम बार को हर प्रभ के है आने, तन तन गुरु गुर सतगुर पादा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने रहाओ। जैसी गगन फिरंती उड़ती, कपरे बागे वाली, ओ राखै चीत पीछे बिच बचरे, नित हृदय सार समाली। त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखै जी नाली। जैसे काती तीस बतीस है, विच राखै रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती कै किस हाथ है, सब वसगत है हर केरी। त्यों संत जना की नर निंदा करै, हर राखै पै जन केरी, भाई मत कोई जानो।

हर हर नाम जब जंतार्यो अग्न सागर गुर पार उतार्यो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भये जन्म जन्म के किलवख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहो सब जाए। गुर पूरै सब भ्रम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे। जे तंदे मैं ओए लपटाए उनते दुगड़ दिड़ी उनमाए। ओह बेला का चीत न आवै बिनस जाए ताहू लपटावै रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए मीठी कर कर बिख्या खाए। हों बंदा हों साधो बैर हमरी भूम कौन काले पैर। हों पंडित हों चतर सियाणा करने हरना बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाना क्या को कह क्या आख बखाना। जित जित लावे तित लगना अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करने हार अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान कबू ना विसरै नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। आनक जतन नहीं होत छुटारा बहु सियाण पे अगल पारा। हर की सेवा निर्मल हेत प्रभ की दरगह सोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का उला तुझे ना लागे ताता झोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न सीत का लास दुख नाम जपत मन होव सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावै कर कृपा जिस आप देवावै। हर हर नाम जाके हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। बहुत दर्ब कर माना या गाना अनक रूप देखने पतियाना। पुत्र कलत्र उर ज्यो जान मेरी ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी। बिन हर भजन देखो बिल्लाते त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत उपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै तिसके पल कछु ना पड़ै। जिसका राज तिसे का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो, चाखत हो रह बिस्मादो, अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती हो तृपतारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ, आन न सुनिए कत हूं जाइए, साध संगत वडभागी पाईए। आठ पहर जेहवे आराद, पार ब्रह्मो ठाकर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मदे बस्त्या पार, इस ही पीता

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर कृपा जा मेले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवा ग्वारेरी, रैन दिनस रह करंगा। प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन। तृप्ता गावन हर कै दर्शन, हर संग्राते मन तन हरे। गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार। एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी। अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते। सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिसे सब मैं सब ते रहते। पार ब्रह्म का होए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखानो। आगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय। तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

रे मन मेरे तू ता को सेव आद पुरख अपरंपर देव तेसी उपर मन कर तू वासा आजुआ जा का प्रवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावै गुरमर सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करै सोई हम माना मीत के करतब।

मीता हमारा अंतर्जामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दास तुम ठाकर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही का लंगा। माधो जा को है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी। रहाओ जा कै हृदय ठाकर होए, ताको सहसा नाही कोए। जा को तुम दीनी प्रभ धीर, ताकै निकट न आवै पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया। गौड़ी महला पंजवा। दुलभ देह पाई वडभागी, नाम न जपै ते आत्म घाती। मर ना जाही जिन्ना बिसरत राम, नाम बिहुन जीवन कौन काम। रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार, कवन अर्थ मृतक सिंगार। जो ना सुने जस परमानंदा, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिद महे समाया। गौड़ी महला पंजवा। काकी माई काको बाप, नाम तारीक झूठे सब साक। काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संजोग हुक्म तू आया। रहाओ एका माटी एका जोत, एको पवन कहां कौन रोद। मेरा मेरा कर बिल्लाही, मरण हारो जियरा नाही। कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट। गौड़ी महला पंजवा। वड़े वड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। कौन वड़ा माया वड़ियाई, सो वड़ा जिन राम लेवलाई। रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चले तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक्यो तत् बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। गौड़ी महला पंजवा। पूरा मार्ग पूरा इसनान, सब कुछ पूरा हृदय इनाम। पूरी रही जा पूरा राखी, पार ब्रह्म की शरण जनता की। रहाओ पूरा सुख पूरा संतोख, पूरा तप पूर्ण राजयोग। हर कै मार्ग पतत पुनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक। करण हार सदवसै हदूरा, कहो नानक मेरा सदगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिट अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट। संत का दर्स पूर्ण स्नान, संत कृपा ते जपिए नाम। रहाओ संत कै संग मिटिया हंकार, दृष्टिया वै सब एक अंकार। संत सो प्रसन्न आए वसपंचा, अमृत नामृत लै संचा। कहो नानक जाका पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल प्रगास है, हर सिमत त्रा सबनास है। सा मत पूरी जित हर गुण गावै, वड्डे पाख साधु संग पावै। रहाओ साध संग पाइए निदनामा, सा संग पूर्ण सब कामा। हर की भगत

राख लिया गुर पूरा आप, मनमुख को लागो संताप, गुरु गुरु जा मीत हमारे, मुख उजल हो वै दरबारे, रहाओ गुर के चरण हृदय वसाए, दुख दुश्मन तेरी हतै बलाए, गुर का शब्द तेरा संग सहाई, दयाल पाए सगले जी पाई, गुर पूरा जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पंजवा, अनक रसा खाए जैसे ढोर, मुख की चेवरी बांध्यो चोर, मृतक देह सा संग बिहुना, आव जात जोनी दोखी ना, रहाओ अनक बस्तर सुंदर पहराया, जो डरना खेत महे डराया, सगल शरीर आवत सब काम, नेफल मानुख जपै नहीं नाम, कहो नानक जा कहो भय दयाला, सा संग मिल पजै गोपाला, गौड़ी महला पंजवा, काल कलेश गुर शब्द निवार।

मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन भगवंत नाही अनकोए मारा राखै एको सोए रहाओ गुर के चरण हृदय उरतार अग्न सागर जप उतरै पार गुर मूर्त स्यों लाए ध्यान इहां उहां पावै मान सगल त्याग गुरसरनी आया मिटया देसे नानक सुख पाया गौड़ी महला पंजवां जिस सिमर

आए जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन वखाणी रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोए जां की दृष्ट सदा सुख होए साजन मीत सखा कर एक हर हर अखर मन मैं लेख रव रहे।

चरण कमल हृदय उरधारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी। सफल जन्म होवे प्रमाण, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान। संत धूर पाई एवड भागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवां, करे दोह कर्म दिखावे होर, राम की दरगह बांधा चोर। राम रमै सोई रामाणा, जलथल महियल एक समाणा रहाओ। अंतर बेख मुखे अमृत सुनावे, जंपर बांधा चोटा खावे। अनक पढ़दे मैं कमावे वेकार, खिन मैं प्रगट होए संसार। अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल विधाता। गौड़ी महला पंजवां, राम रंग

कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दी जय सादर वाला गौड़ी महला पंजवां जिसका दिया पहने खाए तिस्यो आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागे कौडी बदले रतन त्यागे रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा दास सलाम करत कत शोभा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तसै न जाने सुवान

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन पूरे।

साधु संग करो सबको ए सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा जल थल महियल पूर्ण हरमीत प्रांबिन से गाय गुणीत। ऊठत सोवत हर संग पहरुआ जाका सिमरन जमने डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रभु दय निवास।

हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिक संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरण आई जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समर्थ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय समाल। घर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग। मंत्र राता राम कै रंग रहाओ। गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलबख सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जी वै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए। कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ। विपत तहां जहां हर सिमरन नाही। कोट आनंद जय हर गुण गाही। हर बिसरे है दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे नानेरे। सो वड़ पागी।

गई ब्याद उबरे जनमीत मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा नेत्र प्रगास किया गुरुदेव परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ शीतला ते रखिया बिहारी पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी नानक नाम जपै सो जीवै साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा तान्यो मस्तक।

खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपे पए, कृपा निदान की सरणी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित गुण गाय गोपाल, पाप मिटाए साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत बहुत उर्द तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभु स्यो मन माने। आगाध बोध हर अगम्या पारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक प्रभु कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरदे बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे आराध मेरा मन धीरा। रहाओ आन दिन जपो गुरु गुरनाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए, जन्म जन्म के किलबिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने शिव की आपै रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवको आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए। करन करावन पूर्ण सज सोए, रहाओ आप मन बसिया करना हारा। पै बिरसे आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे। जन्म जन्म के किल बिखलाथे, कह ना जाए प्रभ की वडियाई। नानक दास दा शरणाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा। दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूर्ण भाई। ताते बिरथा ना व्यापै काई, रहाओ जो जो चितवै दास हर माई। सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रपत गवाई। नानक हर गुण निरपौ गाई, गौड़ी महला पंजवा। पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गए लेहो अंगुरिया। रहाओ श्रवणन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीना नाथ अनाथ करना मैं, साजन मीत पिता मैं तरिया। चरण कवल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दै गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो। रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुखदातया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्तो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सदी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला, कवन विधि विचार। शरण समाई दास हित, ऊचे अगमे अपार। सगल पदार्थ अहिट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न पय के सवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुतबंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिखतर या संसार। गौड़ी बैरागण रहोए के, शंत के घर। महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। है कोई राम प्यारो गावै,
ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਚ ਪਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਬਨ ਬਨ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਹਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲ।

नानक मांगत नाम आधारे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई। दीन दयाल किरपाल प्रभ नानक, साह संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को।

मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभु की हर कथा सुनावै आन दिन फिराओ तिस पिछे वैरागी, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण, राम रतन हियरे संग्राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकजो, आतीखण मोकी फास काटनहार, जगत गुरु गोविंदो चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी जियो पिंड सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिन रहनी, है कोई संत मिलावे नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की, अनक पांतिस करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्स सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाय गुण सागर, जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेट हर नानक, जन्म कृतार्थ सबल सवेरा, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई, रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई, एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई, एक बस बिन पंच दुहेले, ओ बसदा गोचर ठाई, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई, अन क्यो पाव करे नहीं पावै, बिन सतगुर सरनाई, जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाई, पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई, मेरे राम राय इन बिद मिलै गुसाई, सहज पया प्रभ खिन मैं नाठा, मिल ज्योति जो समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठ लै, सतगुर मजै बतायो, रहाओ जात का देखो ताता तुम ही, मोहे एहो विश्वास होए आयो, कै पै करो अरदास बेनती, जो सुनतो है रगरायो, लयो सहसा बंधन गुर तोरे, ता सदा सह सुख पायो, होना सा सोई फुन होसी, सुख दुख कहां दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा, गुर पर्दा खोल दिखायो, नाव निध नाम निधान इकठाई, तो बाहर कैठे जायो, एक कनक अनक पांत साजी, बहु प्रकार रचायो, कहो नानक परम गुर खोई है, इव तत्त तत् मिलायो, गौड़ी महला पंजवा, औद कट है दिन सुरै नारे, मन गुरमल का इसवारे, रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला, इहां खाड़ चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, एहो संसार बेकार सहसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पी आए हर रस, अकथ कथा तिन जानी, झांको आए सोई विहा जाओ, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास ही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे, गौड़ी महला पंजवा, राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण।

बोले वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते भ्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हम मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतित पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान त्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदे पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा अवरना किन्हीं कीता तुमरै पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्रभ मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाछै कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछै

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहजा अनंत ना संग उन समसर अवर नाम दाते। जगत उदारण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनके उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ता कै चरण परो ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की ऋण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोबन अवध जो दिस सब केश युग मैं काटिया नाम निदान सदनवतन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ। नौ खंड पृथ्वी इस तन मैं रविया निमख निमख नमस्कारा दिख्या गुर की मुंद्रा कानी दृढ़ो एक निरंकारा। पंच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैराग ने आज्ञाकारी तब निर्मल योगी थिए। परम जराय चराई विभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भूता जो ठाकर मस्तक लेखिया। जै पौ नाही तहा आसन बांधो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी। ऐसा योगी वटभागी पेट माया के बंधन काट सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चट। गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औखद जां को गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो ते तंते गुर शब्द दीपक प्रगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जां को साध संगत विश्वासा। तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोइथ साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा। गुर पेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त्या गाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरे मोहया ना शरण प्रभ तोरी अंध कू मैं हाथ दे राखो कछु सियाण उक्त न मोरी। रहाओ करन करावन सब किस तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गतमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी। अपने सेवक संग तुम प्रवराते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाह जैसे दृष्ट्यो चन चकोरी। राम संत मैं भेद किश नाही एक जन कई मैं लाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभु होवा अन दिन कीर्तन रस नर मोरी। तुम समराथिया पार अतूचे सुखदाते प्रभ प्राणिया दोहरी नानक कहो प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवा तुम हर सेती राते संतो निभाए लेहो मोको पुरख विदाते ओट पहुंचा बो दाते। रहाओ तुमरा मर्म तुमाही जानिया तुम पूर्ण पुरख विधाते राखो सरना ना दीन को करो हमारी गाते। तरन सागर बोध चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते कर कृपा जिस राखो संगे ते ते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समर्था सबके तुम रह हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जनो चले हमारे साथे। निर्गुणी आरे कौ गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा गौड़ी महला पंजवा सहि समायो देव जां को सतगुर पए दयाल देव। रहाओ काट जेवरी कियो दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरे दिखायो। पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मंत्र बतया अन पै ठहरायो।
मान आज्ञा सर्व सुख पाए दुखै ठाओ गवायो जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता की ओट गही जैरे जिन तारे ब्रह मंड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बू सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई पल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पत तो उधारे खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तसै निवाजै रे सबको मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे देंदे तोट नाही तस करते पूर रहे रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे नानक दास ताकी सरनाई जाते बिरथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबू न मनो बिसारे इहा उहा सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतपारे रहाओ महाकष्ट काटै खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरनी जलती अग्नि वारे गर्भ कुंड नरक ते राखै पव जल पारे उतारे चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बेदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुवै जन्म ना हारे काम क्रोध लोभ मोहे मन लीनो निर्गुण के दाता रे कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन मोलक साध संगत जप एक खिना रहाओ सुत संपत बनता बिनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूढ़ नंग चोवा चंदन दे फूलिया सो तन तर संग रूलिया मोहे मोहे आ जाने दूर है कहो नानक सदा दूर है गौड़ी महला पंजवा मन तार तर बेहर नाम नो सागर लहर संसा संसार गुरबोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया बसरियत कनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेट परंपो खोया कहो नानक एक ते आया कट कट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा थारी गुर है टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर लै लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजो मिले एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुखी उजले गौड़ी महला पंजवा जिया रे ओला नाम का अवर जे करन करावनो तिन मैं पाओ है जाम का रहा।

त्यागियो सर्व सुखे आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ मान अभिमान दो उस माने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाक रह लाग्यो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टा गयो निरपव पय संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो किश करता है कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कह सोयो मन जाग्यो जल नानक ओड़ तुहारी परयो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर मस्तक गुर पूरे धरयो मन जीतो जग सारी तृप्त गाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चुके अखुट खजाना सतगुर दिया टुट नहीं रे मुके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे पर्दा ठाकर जाओ भेटियो तो बिसरी तात पर आई कहो ना जाई यो अचंभो सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भय बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्वलोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ सात सिमरत वेद बिचारे महापुरख ने ओ कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख न किन्हू लहया तीन पवन की लक्ष्मी जोरी बुझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावै फिर तो पहरे पहरे अनक बिलास करत मन मोहन पूर्ण होत ना कामा जल तो कबहू ना बूझत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन मरण निवार नानक जन की तूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको हिबद को समझावे करता हुए जनावे रहाओ अनजानत किश इन्हें कमानो जब तब कछु ना सादा दह दिस लयो मन दौरायो कमन कर्म कर बादा मन तन तन भूमका ठाकर हाँ इसका हो मेरा भरम मोह कै सूझ सुनाही एह पैखर पै बैरा तब यो कहां कमावन परया जब यो कछु ना होता जब एक निरंजन रंकार प्रभु सब कुछ आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिने हो रचन रचाया कहो नानक करण हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाने एह ओर मूसे रहाओ बरत नेम संयम में रहता तिनका आड ना पाया आगे चरण ओर है भाई ऊहा काम न आया तीर्थ नाए

क्या किश करै के करण हारा, क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो, पूर्ण सबनी जाई जियो। क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागो पाई जियो। पोथी पंडित बेद खो जनता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतत पवित लग गुर के पैरे जियो। भ्रमपो काड़ किए निर्वैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन ना पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो। संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिये जियो। संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिभवन सुख परमानंदा जियो। से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो। चरण पखार करी ने सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो। दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कहिए जियो। इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो। हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन में।

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवां मांझ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान रहाओ। जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध। ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम अगाध। पय कृपाल गुसाई।

एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नामा प्राणी को हर जस मन नहीं आवै। अहनिस मगन रह माया मैं कहो कैसे गुण गावै। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावै। मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देखता से उठतावै। भुगत मुगत का कारण स्वामी मूढ़ ताहे बिसरावै। जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सब को हिरलीना तासो कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे गुणी रहे गुण गाई। जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फोन, भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुन करो, निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की, वृथा जन्म सिरावै, माया मोह महासंकट बानो, तासो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु, तासो नेहु ना लावै, नानक मुक्ता ही तुम मानो, जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा, साधो राम सरन बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन, औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन, सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब, त्यों कंचन अर्पै सा। उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नहन, तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुगता है तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औध कटे नहीं जाने, पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यो, बिरथा औध सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावै। और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन, शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मोह धर रे। पावन नाम जगत मैं हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै, कशु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं, पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला, गौड़ी गुआरेरी। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। निध सद निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार। त्रिकुटी छूटी बिमल बजार, गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया, सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया। लाल पय सूहा रंग माया, नदर पई बिखठाक रहाया। उल्ट पई जीवत मर जा गया, शब्द रवै मन हास्यो ला गया। रस संग्रह बिख पर हर त्या गया, पाए बसे जमका पौ भाग्या। साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यो राता हुक्म अपारा। जात रहे पथ के आचारा, दृष्ट पई सुख आत्म धारा। तुझ बिन कोय न देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत। किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रचो हरनाए। सिख्या दीख्या पोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति महे समाना। लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम पुलाना। कथो न कथनी हुक्म पिछाना, नानक गुरमत सह समाना। गौड़ी ग्वारेरी महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान। गुर अंकस सच शब्द निशान, राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिन्ने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निजकर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन मन गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए। रहाओ मन भूलो बहुचित विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्धो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार। हर शोक उबे दरबार, सुख सहजे जपरद मुरार, नगर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नाम सब दुख निवास, मनमुख मूड़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे, नानक हर गुण गावे। गौड़ी गुआरे री महला पहला, हौ मैं करत्या न सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बिगूते पावे दोए, सो कमावे तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगे नाम विसारी। रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सै सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

मुक्त पय प्रभु रूप नारेखं। जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बाहर सोए रहाओ। निरपौ जोगी निरंजन त्यावै, अंधन जागै सच लिवलावै। सो जोगी मेरे मन भावै, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे। जरा मरण गत गर्भ निवारे, आप तरै पितरी निस्तारे। सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहै सो निरपौ होए। जैसा सेवै तैसो होए, नर नह केवल निरपौ ना। अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ। अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे। साचे शब्द दर निशाणे, शब्द मरै तिस निज कर वासा। आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा। जो दिसै सो

ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसराए पावै सच सोई। दर्शन देख भई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ। नेत्र संतोखे एक लिवतारा, जेवा सूची हर सारा। सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र पतासिया अलाखा भेवा। जै जै देखो तै तै साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा। गुरसम जावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझै कोई। कर कृपा रखो रखवाले, बिन बूझे पशु भए बेताले। गुर कहया अवर नहीं दूजा, किसको देख करो अन पूजा। संत हेत प्रवतर पवन धारे, आत्म चीनै सो तत् बिचारे। साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास। गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया। वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया। ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार। रहाओ बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पारे अफारी। बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरि चंद दान करे जस लेवै। बिन गुर अंत न पाए अपेवै, आप भुलाए आपे मत देवै। दुर्मत हर नाकस दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी। प्रहलाद उधारे कृपा धारी, भूलो रावण मुगदिया चेत। लुकी लंका लूटी लंका सी समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत। सहस बाहो मद कीट मैं खासा, हर नाग छले नखो बिदासा। दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमन संघारे। रक्त बीज काल नेम बिदारे, दैत संघार संत निस्तारे। आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दै संघारे। गुरमुख साच भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पत खोई। राम ना जानिया करता सोई, जन को दुख पचै दुख होई। जन मेजै गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावै परम भुलानिया। एक तिल भूले बहुर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई। राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखै कोई। बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए। नानक नाम मिलै गुण गाए, गौड़ी महला पहला। चोवा चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हंडावो। बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहरा

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड सिंगार कर अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, एहन फूल बिछावै माली, बिन हर नाम सो दे दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दे वाजे, सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हम मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्या त्या गै कवरे, भाई मिलै सच सच है सच रे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जा रै, सो उबरै गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचर्यार मीना, मिर्ग मरै सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कबहू होई, पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ, चोवा चंदन अग

अंतर साच सहज घर आवै, राजन जान परम गत पावै, सच करनी गुर परम चुकावै, निरपौ कह कर ताड़ी लावै। हां हो कर मरना क्या पावै, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हौ मैं बंधन बंद पवावै, नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा काल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया, हम हर राखे गुर शब्द बिचारिया रहाओ। माया मोहे देवी सब देवा, काल ना छोड़ै बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी लाख्या पेवा। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूलै जम का दुख सहना, मैं तर नाम ज्यो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सह मरै संचय माया दाम, मैं तन दीजै हरे अमृत नाम। रैयत महर मुकदम सिकदार है, निश्चल कोई ना दिसै संसार है, अफर्यो काल कूड़ सिर मारै। निश्चल एक सच्चा सच सोई, जिन कर साजी तने सब गोई, ओ गुरमुख जापै ता पत होई। काजी शेख पेख फकीरा, वड्डे कहावै हम मैं तन पीरा, काल ना छोड़ै बिन सतगुर की धीरा। काल जाल जिहवा यार नैनी, कानी काल सुनै बिख बैनी, बिन शब्दै मूठै दिन रैनी, हृदय साच वसै हर नाए, काल न जोहे सकै गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला। बोलै साच मिथ्या नहीं राई, चालै गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल न जो है, मनमुख कौ आवत जावत दुख मोहै। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर लही है, हर रस माते सुख कहियै, गुरमत चालो निचल नहीं डोलै। गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत् विरोलै, सतगुर दीखिया दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योतिया पार। जय देखो तह एक ओंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चूकी अहम ब्रह्मणी, इन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया, सासन दुखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला, राम नाम।

जम का गल जेवड़ा नितकाल संतावै, गुरमुख जम काल नेड़ ना आवै, होमै दूजा शब्द जलावै, नामे राते हर गुण गावै, माया दासी भगतां की कार कमावै, चरनी लागै ता महल पावै, सद ही निर्मल सही समावै, हर कथा सुनै से तनवंत दिसै, जुग माही तिनको सब निवै, अंदन पूज कराही, सहजे गुण रवै साचे मन माही, पूरा सतगुर शब्द सुनाया, त्रैगुण मेटे चौथे चित लाया, नानक होमै मार ब्रह्म मिलाया, गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद बखाणै, अंतर तामस आप ना पछाणै, तां प्रभ पाए गुर शब्द बखाणै, गुर सेवा करो फिर काल ना खाए, मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सी दे, गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे, मेरा प्रपाया गुर कै शब्द सी दे, सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावै सह सुभाए, बिन गुर साचे परम पलाए, मन मुख

लाए। मन करहला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए। मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लै जाए। मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह पहनाया हर आब लया गल।

मन करहला गुरु गोविंद संभाल रहाओ, मन करहला विचारिया मनमुख पाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संग सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चलै तेरे नाल। मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल, आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल। मन

मन करहला तू चंचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया, जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले, भ्रम पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरै गुरसेवा शब्द समाल। हम पंखी मन कर हले, हर तरवर पुरखिया काल, वडपागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, अष्टपदियां एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना, तब यो बावर फिरत बेगाना। जब एहो हुआ सगल कीरीना, ता तेर मैया कड़कड़ जीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मोहे दान दीनी। रहाओ जब किस को एहो जान समंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई। जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हर पिछाता, तब इसनो नाही किस्ताता। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर्मा ने पेदा, तब ते दुख डंड यार खेदा। जब इन एको एकी बुझिया, तब ते इसनो सबके सूझिया। जब एहो तावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तसलाथी। जब इसते एहो यो जवला, पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सदगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किसे कै, आपे बुद्ध विचार बबे कै। दूर ना नेरे सब कै संगा, सा सालाहन नानक हर रंगा। गौड़ी महला पंजवा, गुरसेवा ते नामे लागा। तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा, तिसकै हृदय रव्या सोए। मन तन सीतन निचल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे। इहां उहां जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए, तावत मनुआ आवै ठाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत हम मैं पागे। जास जपत वसिया वै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत एह तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगह सजै। जास जपत कोट मिटै अपराध, जास जपत हर होवै साध। जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै। जास जपत रतन हर मिलै, भवन न छोड़ै हर संग हिलै। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जप सो सहज निवास। जास जपते अग्न पोहत, जास जपते काल ना जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जप सगला दुखलाता। जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जप सुन अनहत तुने। जास जपते निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर सुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा, कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर धारै। पंच जना स्यों संग निवारै, दस इंद्री कर रखै वास। ताकै आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताकै होए। जां को दया मया प्रभ सोए रहाओ। साजन दुष्ट जाकै एक समान, जेता बोलन तेता ज्ञान।

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समरथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवे जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापड़ तन सुहावे जा पिर भावे, गुरमती चित लाइए सदा सुहागण जा सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाई है, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी, लाहा नाम संसारे नानक कामण नहा प्यारी, जा हर के गुण सारे, सात हन रंग माणे जियो, अपने नाल प्यारे अहनस रंग राती जियो, गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हम मैं मारे, इन बद मिलो प्यारे, सातन सोहागण सदा रंग राती, साचा नाम प्यारे, अपने गुरमिल रही है अमृत गही है, दुबदा मारन वारे, नानक कामण हर वर पाया, सगले दुख विसारे,

पानी अन्न ना पावै मरिए हावै, बिन पिर क्यों सुख पाईऐ। गुरु आग्या करो बिनंती जे गुर पावै, जो मिलै तवै मिलाईऐ। आपे मिल लए सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागणो ना पिर मरै न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोह लिया जियो। दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़ कसत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित ने उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो गुर कै पाए प्यारे। रहन सुख सुती जियो अंतरे और तारे, अंतरे और तारे मिलिए प्यारे। आनदिन दुख निवारे अंतर महल पिर रावे, कामन गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे, नानक

कामण बिनो करे जियो ससव सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे गुरमुख कर सवारे। जूझ गु एको सच्चा सोई बुझे गुर विचारे। मन मुख काम व्यापी मोहे संतापी किसे आगे जाए पुकारे। नानक मन मुख थाव ना पाए बिन गुर अत प्यारे। मुंद एयानी पोली निगुनिया जियो पिर अगमे अपारा। आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शन हारा। अवगण बख्शन हारा कामण कंत प्यारा। कट कट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए पंक्ति पाई सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रह दिन राती अंदन रह लिव लाई। नानक सहजे हर वर पाया सा तन नौनद पाई। गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरतै जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए। राम नाम कर बोए था जियो शब्द खेवट विच पाए। शब्द खेवट विच पाए हर आप लंघाए। इन बै दुत्तर तरियै गुरमुख भगत प्राप्त होवै जीवते आयो मरियै। खिन मैं राम नाम किलवे काटे भय पवित शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा कंचन पे मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो राम नाम की बिदनी जानी। मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो। डूब मोए बिन पानी डूब मोए बिन पानी गतनी जानी। हम मैं ता संसारे जो आया सो सब को जासी। उबरै गुर विचारे गुरमुख होवै राम नाम वखाणे। आप तरै कुल तारे नानक नाम वसै कट अंतर।

फिर दोष नाही सुख दाते हाँ विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदया पाया दिन रैन रलिया करे कामनु मिटे सगलिया देसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा। मेरे मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आ प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजिया दूत थाऊ गुवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोधरा गुरदेव सात सतबुद गुरदेव सात सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग नानक एको रव रया दूसर होआ ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं आपै सुनो आपै सुख आसनो आपै सुनत आप ही जासन आपने आप आपै उपायो आपै बाप आप ही मायो आपै सूखमो आपै अस्थूला लखी ना जाई नानक लीला।

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तंते उजह रुच या मनुआ तन नहीं बांछै सुरग ना आछै अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कतै न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख्यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बात अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कहत सुनत का जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट में बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या युग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए पौड़ी एउ जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट ना माए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ्याप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो पायो जो आप दिवायो उवा का अंत न जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे।

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना हरे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुब देऊ ओवा महली पावे तू बासा जन्म मरने होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बेकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या

होवनहार हो सदयाया, हो अकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाउं सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसनो हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो न आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्म ना आवै सो, एक नाम ले मनै प्रो। यैया जन्म ना हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कै ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। का को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

गण काले सब दिवस सास नह बढ़न कटन तिलसार जीवन लोर पर मोह नानक तेउ गवार पौड़ी गंगा ग्रास काल तेह जो सागत प्रभ कीन अनक जोन जन्म मर आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पाए नानक ने छपया सलोक चित चित बो चरण अरबिंद ऊंद कवल बिग सात प्रगट पाए आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दै दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिनसो सबदुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेने तरा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दास दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार स्यान बौचितराई संतन की मन टेक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

जा कौ साध कृपाल साधु संगतौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवन बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बिनासे कदके। सलोक ठाक न होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे वहां कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजम गुर कै शब्द पछान। ओवा डेरा या डेरा कौ श्रम कर कालै जाका तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जान है जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचल सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राए कने न कालियो बंद नानक उभरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहारे प्रभ बसै बन बन का फिराए। टेरी टाहो साध संग अहंग बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जामै जम मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे हाहो आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अनाहना तू न छुट निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाणा रण तेसी जिय आत्म जीतै कोय होमै अनस्यो लर मरै सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेस। अणा को जाणै अपनो एकै टेक आधार रहण दिन सो सिमरत रहै सो प्रभुरख अपार। रेण सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यों प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांझते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ संतै की सिखले हो प्रीत करो सद एक स्यो या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो सब दे कै हाथ जे जित लावो तित लगै नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रहै।

दें दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहूं कहूं मीता, माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे, श्लोक धर जिया रे इक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तदा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मन प्रगास, तन साचा तेउ सच सहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई, श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक परै ते नाही, जाकै मन तन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जाको, निद निदान हर अमृत पूरे, तै बाजे नानक अनहद तूरे, श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंत ना पारा वार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पज त्रोह मोह मिट नाई, जाको राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सो, नानक दूसरे अवर ना को, श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कल युग मैं पाया, फिरया अवसर चरै नहाथा, नाम जपो तो कटिये फासा, फिर फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल लहो नानक बेचारे, श्लोक बिनौ सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस ना।

रेन हो सबजा की, ताजा मान छुटे तेरी बाकी, रण दरगह तो उसी जय भाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रह जाय बेकारा, गुरपुर के शब्द अपारा, राते रंग नाम रस माते, नानक हर गुर की नींदा ते। श्लोक लालच झूठ बिखे ब्याद, या देही मैं बास, हर हर अमृत गुरमुख पिया, नानक सुख निवास। पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू, दुख दर्द ते मिटै खनाहू, नाम औखद जिरदै हतावै, ताहे रोग सुपने नहीं आवै। हारे औखद सब कट है भाई, गुरपूरे बिन बिदना बनाई, गुरपूरे संयम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया। श्लोक वासदेव सर्वत्र मैं, ऊनक तू ठाए, अंतर बाहर संग है, नानक काए दुराए। पौड़ी वबा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वासदेव जल थल मैं रविया, गुरप्रसाद विरलै ही गविया। वैर विरोध मिटे ते मन ते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगलै ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हां हां करत बिहानिया, साकत मुकदया जान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत, नानक किरत कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु, कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत ना मारा दू, रूडो जे बस्यो रिद माही, ओवा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत सगत गावारा, जे ही है अंबुद्ध बिकारा, अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई, निमुख माहे नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट कहो, उक्त स्यान पत्याग, गुर दीख्या जे मन बसै, नानक मस्तक भाग। पौड़ी ससा सरन भरे अवहारे, शास्त्र सिमरत वेद पुकारे, सोधित सोधित सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सा सा संपूल नहारे, तुम समराथ्या गंता पारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। श्लोक खुदी मिटी तब सुख पए, मंतन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग। पौड़ी खखा खरा सरा होताहू, जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू, खरा निमाना होत पुरानी, अंदर जापै प्रभ निर्बानी, पावै खसम ता उवा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसोवा गणता। असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे, सरन परो हर राए, उकत स्यानप सगल त्याग, नानक लय सुमाए। पौड़ी ससा स्यानप छाड़ एयाना, हिकमत हुक्मना प्रपतियाना, सहस पात करै चतराई, संग तुहारै एक न जाई, सौ सौ जप दिन राती, रे जी चलै तुहारै साथी, साध सेवा लावै जे आपै, नानक तां को दुख ना।

नानक सब महरवरया थान थनंतर सोए पौड़ी। हेरो कटकट सगल कै पुर रहे भगवान, होवते आए सद सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान। हाँ छुटकै होए आनंद तेह, हाँ नाही तह आप, हते दुख जन्म मरण संत संग प्रताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संत संग होत कृपाला, ओर कछु न किन्हू किया, नानक सब कुछ प्राप्त हुआ। सलोक लेख कतै न छूटी खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्शल नानक पार उतार। पौड़ी लूण हरामी गुनै गार, बेगाना अल्प मत, जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत। लाहा माया कारण दै दे टुंडन जाए, देवन हार दा तार प्रभ निमखना मनै बसाए। लालच झूठ बेकार मोह, ऐसम पै मन माहे, लंपड़ चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए। तुद पावै ता बख्श लै, खोटे संग खरे, नानक पावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। सलोक खात पीत खेलत हस्त, भरमे जन्म अनेक, भवजल ते काढ़ो प्रभु नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलते आयो, अनक जौन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुर भजन समाए। खिमा गही सत संचयो, खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकर पई अंत सुख विश्राम। खेब निबाही बहुत लाभ, करे आए पतवंत, खरा दिलासा गुरदिया आए मिले भगवंत। आपन किया करे आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्रि भवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पा ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

पर हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जा कै सदा बबेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संतै कै सदा संग, निधाराय आधार। हे ठाकर हौ दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान, राखो ही है परोए। सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत निरुदरा। गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा। गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लगतरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। एहो श्लोक आद अंत पढ़ना। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गुर ए नमै, जुगाद गुर ए नमै, सतगुर ए नमै, श्री गुरुदेव ए नमै। अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ, कल कलेश तन माहे मिटावौ। सिमरौ जास बिसम भरे कै, नाम जपत अगणत अनेकै। वेद पुराण सिमरत सुधाखर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जी बसावै, ताकी महिमा गनी ना आवै। कांखी एकै दर्स तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्व ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै, प्रभ कै सिमरन अंदर जागै। प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्ब निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जपता पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभ कै सिमरन दरगै मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सफल फला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक तां कै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सबके सुझै।
प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद महे समाए, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कहो ना चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहि समानी, प्रभु कै सिमरन निःचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार, सिमरै से जन जिन कौ प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुपमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाभयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले, जय मुस्कल हो वै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तर, हर को नाम कोट पाप पर हर, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंदना पर, हर का नाम जपत निस्तर, अनक माया रंग तिखना बुझावे, हर का नाम जपत अगावे, जे मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही, अनक बिगन जाय आए संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कबो न तोवे, हर का नाम कोट पाप होवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईए साध कै संग, जे मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा,
जहां पंथ तेरा को ना सिंहानू

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रत।

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै, महा उदास्त पितर थीवै। अग्न माहे होमत प्राण, कनक अश्व हैवर भूम दान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी होमे मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू न बिखिया उटरै। जल धोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए मैं शोरे, जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताक बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान, आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरत

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुकदिया जान। सदा सदा एहो कूल नहार नानक राख नहारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन ले प्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कू मैं पतत बिकराल नानक काढ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्स नाहे कश करै।

बिनस जाए हमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर कौ रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस कौ सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याइयै त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसै त्याग कत अवर लोभावै। जेह प्रसाद सुख से सुईजै, मन आठ पहर ताका जस गावीजै। जेह प्रसाद तुझ सब को मानै, मुखता को जस रसन बखानै। जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगै मान पावै, नानक पासे ती कर जावै। जेह प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जेह प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जेह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताकै। जेह प्रसाद तुझको ना पहुँचै, मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे। जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे हे। जेह प्रसाद या पूखन पहरीजै, मन ते सिमरत क्यों वाल सकीजै। जेह प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी। जेह प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी

रखै। जे प्रसाद करै पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर उसदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह है। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परमगत पावे, जे प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते माति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु ना किन्हू लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै।

कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रमहे समानी। साध कै संग गोचर मिले, साध कै संग सदा प्रफुले। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग ना बिंगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौ ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस्ता गोचर लह, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थानी उचै, साधु कै संग मैल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कश काल, दर्शन भेट होत निहाल। साध कै संग कलुख तहर है, साध कै संग नरक प्रहर है। साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रस है। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तर है। साध कै संग लगे पर मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुलपवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रवयाप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी।

ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी क्या होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे।

पर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरसो सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरै, मन की बासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत होवे निह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै।

प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण पाखै, प्रभ भावै ता पत तो उधारै, आप करै आपन विचारै, दुहां सिरिया का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, ज्योतिष पावै सोई करे, अनजानत बिखिया मैं रचै, जे जानत अपने आप बचै, भरमे पूला दे दस्तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जाना मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल देह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा ना गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत या बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, कर्ण करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष पावै सोई फुंथियो, कबहू ऊंच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर खरख, कबहू सोग हर खरंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक्या मिलावनहार, कबहू निरत करै बहुपात, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की होत रवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहो पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त मह आवै, कबहू पला पला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन तारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू से साधक मो ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ पावै तिवै निचावै, ज्योतिष पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संग ते हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनास, मानता नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले, अष्टपदी जिसका अंतर राजा मान, सो नरक पाती होवत समान, जो जानै मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस कौ कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बह जोन परमावै, तन भूम का जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै, नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै, धनवंता होए कर गरबावै, तृण समान का संग न जावै, बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगै परवान, कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगै कौ कैसे गवै, आपस कौ जो पला कहावै, तिसै पलाई निकट न आवै,
ਸਰਬ ਕੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕਹੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ, ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ, ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਛੂਟੈ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਅਨਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਵਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਇਸ ਕੈ ਹੱਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੈ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ, ਬੂਜੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਵੇਕ, ਆਪੈ ਏਕ ਆਪੈ ਅਨੇਕ, ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦੀ ਰਿਆ ਸਮਾਏ, ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ, ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਥਾਂ ਥਨੰਤਰੇ ਕੈ ਸੋਏ, ਆਪਣੇ ਚਲ ਤੋ

नानक जो तिस पावै सोई थया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिलै सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दोखी की पूजै ना आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ना तृष्टै कोए, जैसा पावै तैसा कोई होए। पया कीर्तना मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उसत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास गिरास। सब कश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह बिचार। जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, वडभागी नानक जन से। सलोक तजो सियान सुरजना, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानु की टेक, बिरथी सब जानो। देवन कौ एक भगवान, जिसके दिए रह अगाए। बहुरना तृष्णा लग आए, मारे राखे को आप। मानु कै किश नाही हाथ, तिसका हुक्म भू सुखोए। तिसका नाम रा कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, उसदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साह संग बिनसै सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उज्जल मथा। वड भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे बिचार, सेतनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, एत उत की ओ सोजी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तने निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजै, जिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। आंदन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ही ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जसमन भूख, नानक तिसे ना लागे दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवको किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। न कि जन्म न किश मर, अपन चलता आप ही कर। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मैं आप, अनक जुगत रच था प्यो थाप। अबनासी नाही किश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरे तिन मंत। प्रभ के सेवक सगले उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेल लय कृपाल, गुर का सब जो पय निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बड़ भागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किश करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग। सहज सुभाए होवे सो होए, करने हर पछाणे सोए।
प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा साव तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तस्महे समाए, ओए सुख निदान उन्हु बने आए, आप सको आप।

सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उत्तर समैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रह सार नाम समाल छाड़ सियानप सगली मना सा संग पावै सजतना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दर गै जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरियाप पूर्ण पूर रहो प्रव्याप अनक विस्थार एक ते पे एक आराध प्राष्ट गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया पर तौ सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जंजा चै प्रभदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मंग तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग वड भागी जपया प्रभ सोए नानक नावरते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेव की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सा पूरी रव रहया सा संग हजूरी जिसका साथ न लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अग्न में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरै नाम जपावो भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुआओ नेत्रो पेख दर्श सुख होए मन बिकसै साध चरण तोए भक्त जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दी

दयाल, भगत वचन सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो है पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुणी यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडे आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक पर

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकारे हो कश ना दृटेता पाप उन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक कसै व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म।

अबनासी सुख अपने आसन तै जन्म मरण को कहां बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत या गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर या गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कहो कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तै किसे भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार नानक करते का नहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन जब अपने आप उरतार है तब सगन अब सगन कहां विचार है जह अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप जय अशाला शेदा भेद समा

पूर्ण पूर रहे दयालो सब उपर होवत कृपालो अपने कर्तव जाने आप अंतर जामी रहे ब्याप प्रतपाल जियन बहु पात जो जो रचियो सोत सहत आत जिस भाव तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करनहार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आसना बिरथी जाए सेवक को सेवा बनयाई हुकम बूझ।

जिस मन बसै ते सच परीखिया, मंतन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवै जाए। तिसते दूर कहां को जाए, उबरै राखण हार ते आए। निरपहु जपै।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ता की आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए।
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविद करो विचार, पत उदाहरण पैहरण सुख सागर निरंकार। दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए, दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए। जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए, गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए साथ।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुरसेवा करनीत, राम रतन मंतन बसै तज काम क्रोलो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पहे जिनमन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रैगुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तौ घणौ सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाँ हाँ करत विहाए, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अनके उपाए। आद ब्याद उपाद रस कबो न टूटै ताप, पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बूझै प्रताप। मोह परम बुढ़त कणो महानरक मैं वास, कर कृपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान, चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम। पौड़ी चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार, सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जप सार। नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेश, मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। पाओ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार, दुख दर्द अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल, मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल। सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग, साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग। पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच, कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै नह बुझिए नह कछ करत विचार, स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक, रचन हार न सिमरियो माना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त नारंच, नानक बिरले पाईए जो नारचै परपंच। सलोक खट शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार, भगत सोहै गुण गावते नानक प्रभ कै द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथय अनेक, ऊतम उच्च पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख। नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद, रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनसियो पाई शरण दयाल, चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तोटा हिराए सात संग लिव लाए, खाट खजाना गुण निधारे नानक नाम ते आए। सलोक संत मंडल हर जस कथै बोले सत सुभाए, नानक मन संतोखी है एक सिसो लिव लाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूटना जाहे भंडार, संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय, दुख हरै पव जल तरै मन चंदिया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान, अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण।
सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बल हारण हर हर नाम जपे। सलोक आठ पहर गुण गाइय तजिए अवर जंजाल जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगा सदा आनंद निर्मल रीत निरुदर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच बसे ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिए नानक नाम हर रंग। सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार। पौड़ी नौमी नवे शद्र अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारत्रे रमै बकै साध निंद करन सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कहताई अगना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो जत देखौं तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, समय पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र तासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचौ पाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरके अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर सोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश समय प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरदेव, मन तन शीतल सांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवा गवन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो न डोलता, पूरा किया प्रव्याप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मा पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब उपर जा का हथ, गुण निदान गोबिंद गुर, किया जा का होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई सरन योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिए, सिमरो हर के चरण, पतो धारण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेसै को दृढ़ै, तिसका होए उधार,
किलबे काटै होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुखी उजला नै पो है तिसमाए सो सुरता सो बैसनो सो ज्ञानी तनवंत सो सूरा कुलवंत सोए जिन भजया भगवंत खत्री ब्राह्मण सूद वैस उदरै सिमर चंडाल जिन जान्यो प्रभ अपना नानक तसैरवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनों समत सब कोए एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोए महला चौथा हम है माया सब विख है नित जग तोटा संसार लहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार हम मैं मैल बिख उतर हर अमृत हर और तार सब कार तिन के सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सृजनहार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब ते आईंदी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीति तिस पार लंघाई गुरमुखा नु फल पाईंदा सच नाम समाई वड्डे मेरे साहिबा वड्डी तेरी वड्याई सलोक महला चौथा विण नावै होर सलाहना सब बोलन फिका साध मनमुख अहंकार सलाह दे हौ मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरै खप जावै सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम ते आई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिनी तू एक मन सच ते आया तिनका सब दुख गवाया तेरा श्री को नाही जिसनों लवे लाए सुनाया तो जेवड़ दाता तू है निरंजना तू है सच मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहेबा सच्चे सच नाया सलोक महला चौथा मन अंतर हम मैं रोग है प्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मेरे सतगुर साधु सजना महला चौथा मंतन रत्ता रंग स्यों गुरमुख हर गुणतास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास पौड़ी तू करता पुरख या गम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तो जेहा तू है पड़ी है तू घट घट एक वर्तदा गुरमुख पर गड़िया तू सच्चा सब सदा खसम है सबदू तू चढ़िया तू करै सो सच्चे होए सी ता कायत कड़िया सलोक महला चौथा मैं मन तन प्रेम परम का अठे पहर लगान जन नानक कृपा धार प्रभ सतगुर सुख वसन महला चौथा जिन अंदर प्रीत ब्रह्म की ज्यो बोलन तवै सुहान नानक हरे आपे जानदा जिन लाई प्रीत पेरन पौड़ी तू करता आपा पुल है पुलन विच नाही तू करै सो सच्चे भला है गुरशब्द बुझाही तू करण कारण समर्थ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद ते आही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छडाही सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेश राय अखी तार लगन गुर तुठै सज्जन मिलया जन नानक सुख सवन महला चौथा
ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੋਂ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਚਲਾਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛਦਾ, ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਦੂ ਕਿਛ ਕੁਜਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ, ਸੋਈ ਵੱਡ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ, ਸੋ ਮੂੜਿਆ ਜਾਣੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਸੋ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੋ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨ ਅਮਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ, ਤਿਨ ਲੱਥਾ ਹਉ ਮੈਂ ਭਾਰ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੈਕਾਰ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਤਿਸਨੋ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਕਹੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵਦਾ, ਤਿਸਨੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਆਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਨੂੰ, ਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਰਾਸ। ਸਵੇ ਆਪੇ ਆ ਵਰਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਸਭ ਕਿਲਵ ਕੱਟੇ ਤਾਸ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਦ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ। ਜੋ ਤੁਦ ਸੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਦਰ ਉਜਲੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਭਾਵੈ। ਕੂੜ ਯਾਰ ਪਿਛਾਹਾ ਸੱਟੀਆਂ ਨ, ਕੂੜ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਕੂੜਿਆਰੀਆਂ, ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੋ ਹੋਏ ਜਾਵੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ, ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਓਏ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚੀ ਪੈਨ ਆਏ। ਇਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ, ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵੈ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਫ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਸੁਆ ਵਗੀਰ ਸਭ ਉਗੜ ਆਏ। ਓਏ ਜਿਹਾ ਚਿਤਵੈ ਨਿਤ ਤਿਹਾ ਪਾਏ ਨੂੰ, ਓਏ ਤੇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਈਏ ਵਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਦੁਹੀ ਸ੍ਰੀ ਖਸਮ ਆਪੇ ਵਰਤੈ, ਨਿਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਚਲਤ ਸਵਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਤ ਲੱਗੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਘਰ ਵੱਥ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਖਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੜੈ ਕਰ ਕਰ ਮੰਗਾਏ। ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਗੁੱਜੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੁਲੰਮਾ ਭਾਜ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਭੇਟੀਐ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਵਰਨ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਏ। ਪੌੜੀ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨ ਹਰਿ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਸਭ ਜਲਾਏ। ਔਗਣ ਵਿਕਣ ਪੱਲਰੀ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਏ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਔਗਣ ਮੇਟ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਲਾਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਵੰਦਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਮਤ ਸੋ ਸੰਜਮ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਤਾਣ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਰੱਖ ਕਰਾਵੈ। ਜੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਪੂਜੇ ਗੁਰਮੂਰਤ, ਸੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਤਿਸ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਵੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਸ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਖਾਵੈ।
नरक कोर मोह काले खड़िया जो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे जा हर हर नाम ते आवे हर बाता आग सुनाए नानको हर करते ए वै भावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म न मन्ने ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दईये उस दे गल पाया ओ गल फरोसी करे बहु तेरी उसदा बोलिया किसै ना पाया ओह कर कर हंडै जो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै उसदा पास छड गुर पास बह जाया जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आग सुनाए पूरे गुर का बचन उपरे आया गुर सिखा वडियाई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है सो लै जे सतगुर टिके सो सतगुर जे साहित्य आईंदा सच सच्चा सतगुर एके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके ओए बोले किसै ना भावनी मोह काले सतगुर ते चुके सलोक महला चौथा हर प्रभ का सब खेत है हर आप किरसाणी लाया गुरमुख बख्श जमाईया नो मन मुखी मूल गवाया सब को बीजे अपने भले नो हर भावे सो खेत जमाया गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फले अमृत पाया जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करतै मार कढ़ाया किरसाणी जमी भाव कर हर बोहल बख्श जमाया तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुर पुरख ते आया जन नानक नाम आरा दया आप तरिया सब जग

गुह पढ़ सगवी मल लाए मन मुख आया, पराई जो निंदा चुगली नोवे मुख कर कै भेजिया, ओथे पी मोह काला दुहावे मुखां दा कराया, तड़ सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे पौली पौंदी, फावा होए कै उठ कर आया, अगे संगति कुड़मी वे मुख रलना ना मिले, ता वोटी भतीजी फिर आण कर पाया, हलत पलत दो बह गए नित भुखा कूके तिहाया, तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो सच है मार पचाया, एहो अखर तिन आखिया जिन जगत सब यो पाया, महला चौथा साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर किथों रज खाए, जे साहिब कह कर वथ होवे सो नफर हथ आवे, अणहोंदी किथों पाए जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगिए, सा सेवा औखी होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी, नानक वी चार संत जन चार वेद कहंदे, भगत मुखे दे बोल दे से वचन हो मंदे, प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनंदे, सुख ना पाएन मुगद नार संत नाल खहंदे, ओए लोचन ओना गुणे नो ओए अंकार सड़ंदे, ओए विचारे क्या करे जा भाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे, वैर करे निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे, जो जो संत सरापिया से फिर पवंदे, पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे, श्लोक महला चौथा अंतर हर गुरु त्याईंदा वड्डी वड्याई, तुस दित्ती पूरे सतगुरु कटे नाही एक तिल किसे दी कटाई, सच साहेब सतगुरु कै वल है ता चख चख मरे सब लोक आई, निंदका के मोह काले करे हर करता है आप वधाई, ज्यों ज्यों निंदक निंद करे त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई, जन नानक हर यारा दया तिन पैरी आन सब पाई, महला चौथा सतगुर सेती गणत जे रखै हलत पलत सब तिसका गया, नित चहिया पाए चगू सुटे चखदा चखदा चढ़ पया, नित उपाव करै माया तन कारण अगला तन पी उड गया, क्या ओ खटे क्या ओ खावै जिस अंदर से सा दुख पया, निर्वैर नाल जे वैर रचाए सब पाप जगतै का तिन सिर लया, उस अगे पिछे टोई नाही जिस अंदर निंदा मोहे अंब पया, जे सोयने नो ओह हथ पाए ता खेहू से तीर रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओ आवे ता पिछले औगुण बख्श लया, जन नानक अंदर नाम ते आया हर सिमरत किलविख पाप गया, पौड़ी तू है सच्चा सच तू सबदू उपर तू दीबान, जो तुद साहित्य आए दे सा सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजले सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिनी गुरमुख सालाहिया सच शब्द निशान, सच जे सच्चे सेव दे तिन वारी सद कुरबान, श्लोक महला चौथा तुर मारे पूरे सतगुरु से ही हुण सतगुर मारे, जे मेलन नो बहु तेरा लोची है ना देई मिलन करतारे, सत संगत टोई ना लहन वे संगत गुर विचारे, कोई जाए मिले हुण ओ नानो तिस मारे जम जंदारे, गुर बाबे फिटके से फटे गुर अंगद कीते कूड़ियारे, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हथ एना विचारे, गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे, कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की
ਤਿਸ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਹਨ ਲਖਮੀ ਖੜ ਮੇਲੇ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਧੂੜ ਤਿੰਨ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਕਉ ਆਪ ਦੇ

जिन अंदर नाम निधान है तिनका पौ सब गवाए सी, जिन रखण कौ हर आप होए होर केती चख चख जाए सी, जन नानक नाम ते आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा गुरसिखा कै मन भावदी, गुर सतगुर की वडियाई, हर रख पै सतगुरु की नित चढ़ै सवाई। गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई, गुर सतगुर तान दी बाण हार तिन सब आण निवाई। जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई, हर दरगह ते मुख उजले बहु सोभा पाई। जन नानक मंगे धूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच, सच सच्चे की वडियाई, सा लाही सच सलाह सच, सच कीमत किन ना पाई, सच सच्चा रस।

गुर पूरा हर प्रभ सेवया मन वजी वधाई। श्लोक महला चौथा। जिन्ना अंदर उमर थल से ही जान सूलिया, हर जाने से ही बिराओ हाओ तिन विटाओ साध कुम कोलिया। हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन विटाओ तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमावे हाओ गुलम तिना का गोलिया। हर रंग चलू लै जोर ते तिन पिनी हर रंग चोलिया। कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा। औगणी भरिया शरीर है क्यों संतों निर्मल होए। गुरमुख गुण में हाजी है मलह मैं कंडे धोए। सच वणंजै रंग स्यों सच सौदा होए। तोटा मूल ना आवई लाह हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी सलाही सच सलाहना स सच्चा पुरख निराले। सच सेवी सच मन वसै स सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी आराध्या से जाय रले सच नाले। स सच्चा जिनी ना सेव्या से मन मुख मूड बेताले। ओह आल पताल मोह बोल दे जो पीता मद मतवाले। श्लोक महला तीजा। गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। भाणे चलै सतगुरु कै ऐसा सिंगार करे। सच्चा शब्द पतार है।

मंत्र बताए हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया।

अपनी कृपा करे हर मेरा नानक लय बहोड़ पौड़ी। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्या ता पाप कसमल पन्ने। उपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाना मन्या तिन चढ़ी चवगण मन्ने। एह चाल निराली गुरमुखी गुर दिखिया सुन मन पिन्ने। सलोक महला तीजा जिन गुर गो प्या अपना तिस ठौर ना ठाओ, हलत पलत दो वै गए दर गए नाही थाओ। ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणते कुसी है दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है आपे लय जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा लेन तिन्ना दरगह ले छड़ाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां। रहंदे खोंदे निंदक मारिया नु, कर आपे आहर संत सहाई नानका। वरतै सब जाहर महला पंजवां। मुंडो पुले मुंड ते किथे पाए न हाथ, तिन्ने मारे नानका जे करन कारण समरथ। पौड़ी पंजवां।

जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेवो जियड़े दाता बख्शेंद किलविक साब विनाश होन सिमरत गोविंद। हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत माया स्वाद सब फिकिया हर मन पावंद। त्याए नानक परमेसर जिन दित्ती जिंद सलोक महला पंजवां वत लगी।

भिखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगे मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चूंगे नित भेड़ राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पद ज्यों जर छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज शिव।

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जाओ बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदा स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं ने हो रहाओ। साहन सत करे जी अपने, सोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन धन ग्रहो सरौंप शरीर, सोई सुहागन कह कबीर। गौड़ी कबीर जी बिखिया ब्यापिया सगल संसार, बिखिया लै डूबी परिवार। रे नर नाम चौड़ कत बोड़ी, हर स्यो तोड़ बिखिया संग जोड़ी। रहाओ सुर नर दा दे लागी आग, निकट नीर पस पी वसना चाग। चेतत चेतत निकस्यो नीर, सो जल निर्मल कथत कबीर। गौड़ी कबीर जी जिहे कुल पूतना ज्ञान बिचारी, विधवा कसना पई महतारी। जह नर राम भगत ने सादी, जन्मत कसना मोह अपराधी। रहाओ मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना कैसे कुबज करूप। गौड़ी कबीर जी जो जन लेहे खसम का ना, तिन कै सद बलिहारे जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावै, सो पाई मेरे मन पावै। रहाओ जिहे कट राम रया परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर। जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रवै कबीर। गौड़ी कबीर जी गगन रसाल चुवै मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी। ओवा को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा। रहाओ सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अंदर जाई। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया। गौड़ी कबीर जी मन का स्वभाव मने व्यापी, मने मार कवन से थापी। कवन सो मोन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे। रहाओ मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। कहो कबीर जो जाने पे ओ, मन मधुसूदन त्रिपवन दे ओ। गौड़ी कबीर जी ओए।

सूर्य चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आप ते बांधया, मोह कै फाद काल सर संध्या रहा, कटी ना कटे टूट न जाई, सास अपन हो जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरे काहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे नामै जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुनो।

और राग गौड़ी ग्वालेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुखिया गै आवै, सो सुख हमो न मांगया पावै। बिखिया जो सुरत सुखयासा, कैसे होई है राजा राम निवासा रहाओ। इस सुख ते इस ब्रह्म डराना, सो सुखमो साच कर जाना। सन कादक नारद मुन सेखा, तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुरप्रसादी जय दियो नामा, भगत कै प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आमन जाना, जिसका परम गया तिन साच पिछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पेओ, एह मन लीन पे सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन का रव रहे कबीरा। गौड़ी ग्वारेरी अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पे लिव लागे रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होहे नायाना, कह कबीर राम नाम पिछाना। गौड़ी पी सोरठ पी, रे जीन लज लाज तोय नाही। हर तज कतकाहू के जाही रहाओ। जा को ठाकर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोही। सो साहेब रहया परपूर, सदा संग नाही हर दूर। कवला चरण सरण है जाके, कहो जन का नाही करता के। सब को कह जास की बाता, सो सम्राथ निजपत है दाता। कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग जा

कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियोर लाए, पांच दूते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै नित चीत। माया तपत

संतोख ना में आधार, जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पे खो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई, जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज, जल है सूतक थल है सूतक, सूतक योपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बेगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता, रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवनी होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई, फासन की बिद सब को जाने, शूटन की एक कोई, कह कबीर राम हृदय विचार है, सूतक तने ना होई, गौड़ी झगड़ा एक न बेरो राम, जाओ तुम अपने जन सौ काम, रहाओ एहो मन बड़ा के जासो मन मानिया, राम बड़ा कह राम मैं जानिया,

दुचित्ते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी धारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछै जो जल बरखै, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जस सुनै ना हर गुण गावै, बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहज। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाले, आप गए और नहूं कहले। छाड़ कु चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहूं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर ना माने को, मुए सराद कराही। पितर पी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै। कुशल पी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा, तिस आगे जियो देही। ऐसे पितर तुम्हारे कहिए, अपन कया ना लेही। सर जियो काटे निर्जियो पूजे, अंतकाल का उपारी। राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया, बिखिया सो लपटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे, ऐसे सुन समाया। अंजन माह निरंजन रही है, बौना पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ असर रखो। इन बिद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद प्रगासा। सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी, निश्चल सेव कर बासा। तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है, एह जग बेदया भाई। दैद सिर बूंडी पवन चुलावै, डोर रही लिवलाई। ओन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी। कहो कबीर अनपव के देखिया, राम नाम लिव लागी। गौड़ी बैरागण ते पदे, उल्टत पवन चक्र खट भेदे। सुरत सुन अनुरागी, आवे ना जाए मरे ना जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अगल पई अवरै। ना तर था बेगाना रहाओ। निवरै दूर दूर फुन निवरै, जिन जैसा कर मान्या। अलौती का जैसे भया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कहिए, ऐसा कोई बबेकी। कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया, तै उत्पत पर लो नाही। जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै, सुन समाध दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी, तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती। हल्की लगे ना भारी रहाओ। अर्ध उर्द दो तै नाही, रात दिन सतै नाही। जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। आगमा गोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लही है। कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे, पवन पूंजी परगासे। तृष्णा गूण परी कट पीतर, इन बिद टांड बिसाहे। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार की ओ बनजारा।
रहाओ। काम क्रोध द्वय भय जगाती मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान निबेरै टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैले कथा का चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंच पदा पेवकड़ै दिन चार है, साहुरड़ै जाना अंधा लोक न जानी मूर्ख ए आना। कहो डडिया बांधै धन खड़ी, पाहू कर आए मुकलाऊ आए रहाओ। ओहो जो ओहो जे दिसै खूड़ी, कौन लाज बहारी। लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे। तां सोहागण जानिए गुरशब्द विचारे, किरत की बांधी सब फिर है देखो बिचारी। एसनों क्यों आखी है क्या करे विचारी, पई निराशी उठ

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़ नहारो सदा अतीता एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटै जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बियोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगर पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर ता को पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज अकीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिया तोल ना तुलिए पाचन से अढ़ाई। जौ कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतनी निकसै नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहार बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दुह मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। लोग जानै एहो गीत है एहो तो ब्रह्म विचार। ज्यों कासी उपदेश होए मान समर्ति बार।

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म तर्म करते बहु संजमो अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहि बिचारे ओरे उन्मत मान हिरयो मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगाने कष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बवरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवरा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बवरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गहयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यो पसरियो उपासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न ना दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी तार एह सार तन कही है जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लाल चस्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कने ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबने अरसुत दारा पेखन कहो जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिनको मंदर चौदे ठाठ ठयो कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम ओसारी खिर मैं बिनस जाए हंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जात पावै ता हुक्म नावै इस बेड़े को पार लंगावै गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर पज सारिंग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नामी
ਜੋਨ ਛਾੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਜੀਅਰਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਗਾਓ। ਰਹਾਓ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ, ਤਉ ਜਠਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ, ਲਖਚੋ ਰਾਸੀ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ, ਅਬਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਇਓ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਜ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨੀ, ਆਪਤ ਦਿਸੈ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਸੁਰਗ ਬਾਸਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਰਹਾਓ ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਨੀਐ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰਖੀਐ, ਬਿਪਤ ਦੇਖਣਾ ਰੋਏ, ਜਿਉ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਦ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ, ਸੰਤਨ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ, ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ, ਜਿਹ ਕਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰ। ਗੌੜੀ ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਲੇ ਜਿਨ ਭਾਰ, ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ, ਤੈ ਸੋਇ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਰਹਾਓ ਔਰ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ, ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਦੁਖ ਕਰ ਰੋਵੈ ਬਲਾਏ। ਜਹਿ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹਿ ਰਚੀ, ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾਗ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮ ਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ, ਉਰਨਾ ਪੀਜੈ ਭਗਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਰਹਾਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀ ਜੈ, ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣੋ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ, ਮਾਝ ਬਨਾਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ, ਉਹ ਆਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨੋ, ਮੋਕੋ ਛੋਟ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਊ ਰੇ, ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ, ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਡ ਭਾਗੋ, ਰਹਾਓ। ਬਿੰਦਰਾ ਬਾਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ, ਕਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ, ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੁਹੀ ਸਾਰਿੰਗ ਧਾਰ, ਮੋਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ। ਗੌੜੀ ਬਾਰਵੀਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਰਵੀਂ, ਬਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ, ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਦੇ ਬਾਸਾ, ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇ।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारहवीं मन रे छड़ो भरम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़े मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर।

साहेब रोस तरह के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावै मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, एक है देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास हो जारा। नौकर देख

माई मोहे अवर न जान्यो अनाना, शिव संकाद जास गुण गावै तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना, बिखै रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मने ना आना ना, चंदन बास भय मन बासन त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन न रहावा, बोल बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई, अल लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अल लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग छेद, तुरक तरीकत जानी है, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेटै ताहे ना माना, ओवंकार लख जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रहे, ता होए न खियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कतै ना जाई, अगे गह गै गगन रहाई, कग्गा घट घट निवसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है, परम सियानप एह, चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र है अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा है छत्रपत पासा, छाक के ना रहो उषाढ़ के ना आसा, रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, झगर किए झगर ही पावा, नया निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेरा उपायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कतै ना जावा, रह लपट घट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करई पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लखै जाओ कोई दूर न परे फंक विचार है ता फल फंक सब तन फार है बब्बा बिंद।

मम्मा मूल गया मन मान मरमी हुए सो मन को जानै मत कोई मन मिलता बिलमावै मगन पया ते सो सच पावै मम्मा मन स्यो काज है मन सादे सिद्ध होए मन ही मन स्यो कह कबीरा मनसा मिलिया ना कोए एहो मन शक्ति एहो मन सीओ एहो मन पंच तत् को जियो एहो मन ले जाओ उन मन रहे तो तीन लोक की बात कहे यैया जाओ जाने तो दुर्मत हानो कर बस काया गाओ रण रूतो पाजे नहीं सूरो थारो नाओ रारा रस निरस कर जानिया होए निरस सो रस पहचानिया एहरा छाडे ओ रस आवा ओ रस पिया ए रस नहीं पावा लल्ला ऐसे ले मल्लावै अंत ना जाए परम सच पावै आर जाओ तहां प्रेम लेवलावै तो अलह लह लै चरण समावै ववा बार बार बिसन सुमार ना आवै हार बल बल जे बिसन तना जस गावै बिसन मिले सब ही सच पावै।

ससा सोनी का कर सो दो, घट परचा की बात न रो दो, घट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंतर भवन राओ, खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पव जल तरत न लावे बारा, ससा सो सह से सवार, सोई सही संदे निवार, अल्प सुख शाड परम सुख पावा, तब एह त्रियो कंत कहावा, हा हा होत हुए नहीं जाना, जब ही हुए तब है मन माना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई, ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग, लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे, खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते, अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह, बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पशान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पैर है, पंडित लोग कौ व्यवहार, ज्ञानवंत कौ तत् विचार, जा कह जी जैसी बुद होई, कह कबीर जाने गा सोई, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थिति कबीर जी की, श्लोक पंद्रह थिति सात वार, कह कबीर उर्वार ना पार, साधक सिद्ध लख जो पे ओ, आपे करता आपे दे ओ, थिति अमावस में आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपो शब्द तत् निजसार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद भय मन निर्मल, हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ, परवा प्रीतम करो विचार, घट में खेल अकट अपार, काल कल्पना कदे ना खाए, आद पुरख में रह समाए, द्वितीया दोहकर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए, अकुल निरंजन एक पाए, तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास,

पंच है पंच तत् विस्थार, कनक कामनी जुग व्यवहार, प्रेम सुधा रस पीवै कोए, जरा मरण दुख फेर ना होए, छट खट चक्र शहू दिसताए, बिन पर चै नहीं थिरा रहाए, दुबदा मेट खे मांगै रहो, कर्म तर्म की सूल ना सहो, सातै समकर वाचा जान, सातै सतकर वाचा जान, आत्म राम लिहो प्रवान, छूटै संसा मिट जाहे दुख, सुन सरोवर पावो सुख, अष्टमी अष्टतात की काया, ता मैं कुल महा निद्राया, गुरगम ज्ञान बतावे भेद, उल्टा रह अपंग अशेद, नौमी नवे द्वार कहो साध, बहती मनसा राखो बांध, लो मोह सब बिसर जाहो, जुग जुग जीवो अमर फल खाहो, दसवीं दैदस होए आनंद, छूटे परम मिले गोबिंद, ज्योत स्वरूपी तात्यानूप, अमल ना मलन शाह नहीं धूप, एकादशी एक दिस्तावै, तो जोनी संकट बहुर न आवै, शीतल निर्मल पया शरीरा, दूर बतावो पाया नीरा, बारस बारह उगवै सूर, अहनिस बाजे अनहद तूर, देख्या तिहू लोक का पियो, अचरज पया जीव ते सीओ, तेरस तेरा यगंब खान, अर्ध उर्द बिच सम पहचान, नीच ऊच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल समान, चौदस चौदह लोक मझार, रोम रोम में बसै मुरार, सासन तो का त्रो ध्यान, कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान, पुन्यो पूरा चंद आकाश, पसरै कला सहज प्रगास, आद अंत मद होए रहे आथीर, सुख सागर में रमै कबीर, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत, बार बार हर के गुण गावो, गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ, आदित करै भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंब, अहनस अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मह वाए, सोमवार सस अमृत चरै, चाखत बेह सगल बिखहरै, बाणी रोकिया रह द्वार, तो मन मत बारो पीवनहार, मंगलवारे ले माहीत, पंच जोर की जाने रीत, कर छोड़े बाहर जिन जाए, ना तर खरा रिसै है राए, बुधवार बुध करै प्रगास, हृदय कमल में हर का बास, गुरमिल दो एक समतरै, उर्द पंकलै सुदा करै, बृहस्पत बिखिया दे बिहाए, तीन देव एक संग लाए, तीन नदी तै त्रिवटी माहे, एनस कसमल तो वै नाहे, सुकृत सहारै, सो एह व्रत चढ़ै, अनदिन आप आप स्यों लड़ै, सुरखी पांचो राखै सबै, तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै, थावर थिर कर राखै सोए, जोत दी वट्टी कट मैं जोए, बाहर पीतर पया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग कट मैं दूजी आन, तौ लो महल न लाबै जान, रमत राम स्यों लागो रंग, कह कबीर तब निर्मल अंग,

राम कहत जन का स्ना तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तसवीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल।

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सोदर सोदर तेरा केहा सो कर केहा।

गावो गावो कामणी बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जा सहो मिलिया ता जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रविया है, आप गया मन मानिया। अपना कार्य आप सवारे, होरन कार्य ना होई, जित कार्य सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई। भणत नानक सबना का परे को सोए, जिसनो नदर करे सासो हागण होए। आसा महला पहला, गृह बन समसर सहि सुभाए, दुर्मत गत पै कीर्त ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ। सतगुर सेव पाए रही थाओ, मन चूरे खड़ दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै, दुख बिख्या सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिवत सलाहण सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे, पेख वर्ण दिसै सब खेहे, जो पजै सो आवै जाए, नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप, उजल मोती चुगै हंस, सर्व कला जगदीसै अंस। जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित बेद, नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवातो, राजन राज सदा बिकसंतो, जिस तू राखै कृपा तार, बूढ़त पाहन तारै तार। त्रिभवन मैं जोत त्रिभवन मैं जानिया, उल्ट पई कर कर मैं आणिया, अहनस भगत करे लिवलाए, नानक तनकै लागै पाए। आसा महला पहला, गुरमत साची।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई पीख को पीखिया खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टायो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंध, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पहो जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगह बैसन होवे थाओ, जा तुद भावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विनसे वा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसै नाही, दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही, मत विच मरण जी

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठग ना पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझना होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी का

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जग हो निष्परसोवा इं क्यों कंत प्यारी होवा सौ जग हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बंतन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ हाउ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवे पतार तव नानक कंते मन पावे छोड़ वडाई अपने खसम समावे रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी ए

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइस तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिया लख संजिए खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखै ना पवै ता जी किथै फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़ै पुराण जा पत लेखै ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसव किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागै पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए जोगी जदी जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देस गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे

पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चल नहारो। पंच सखी मिलर्दन करे हा, साहो पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। एको अंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर शेवा महला पहला। मन मोती जे गहना होवे, पौन होवे सूत धारी, खिमा सिंगा।

मधुसूदन कर मुंदरी पहरै परमेश्वर पट लेई तीरज तीरज तड़ी बंधावै कामणो श्री रंग सुरमा देई मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करेई ज्ञान राओ जब से जय आवै ता नानक भोग करेई आसा महला पहला कीता होवै करे कराया तिस क्या कहिया भाई जो किश करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुकम भला तुद पावै नानक ता को मिलै वडाई साचे नाम समावै रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाहड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सकै कोई जे को दरगह बहुता बोलै नौ पवै बाजारी सतरंज बाजी पक्कै नाही कच्ची आवै सारी ना को पढ़िया पंडित बीना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहियै बंदा आसा महला पहला गुर का शब्द मनै मैं मुंदरा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करै पला कर मानो सह

अमृत नाम ने रंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं रहाओ। शिव नगरी में आसन बैसाओ, कल्पते आगी बादं। सिंगी शब्द सदा तुन सोहै, एनिस पूरे नादं। पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान बेपूतं। हर कीर्त रह रास हमारी, गुरमुख पंथ अतीतं। सगली ज्योत हमारी समया, नाना वर्णा नेकं। कहो नानक सुन पार्थर योगी, पार ब्रह्म लिवेकं। आसा महला पहला, गुड़ कर ज्ञान त्यान कर धावै। कर करनी कस पाई है, पाठी पवन प्रेम का पोचा। इतरस अम्यो चुआई है, बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै। सहज रंग रच रहया, अहनस बनी प्रेम लिवलागी। शब्दा नाहद गहया रहाओ, पूरा सच प्याला सहजे। तिसे पियाए जा को नदर करे, अमृत कावा पारी होवे। क्यामत शूशे पाओ तरे, गुर की साखी अमृत बाणी। पीवत ही परवान भया, दर दर्शन का प्रीतम होवे। मुक्त बैकुंठ करै किया, सिफती रता सद बैरागी। जुवे जन्म न हारै, कहो नानक सुन पार्थर योगी। खीवा अमृत धारै, आसा महला पहला। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आपे दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया। एती मार पई कर लाने, तै की दर्द न आया। करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे। ता मन रोस न होई रहा हो, सकता सीहो मारे पै वगै। खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती। मुया सार ना काई, आपे जोड़ वे छोड़े आपे। वेख तेरी वड़े आई, जे को ना उतराए वड़ा। साध करे मन पाने, खसमे नदरी कीड़ा आवै। जेते चुगे दाने, मरमर जीवे तक्ष पाए। नानक नाम वखाने, राग आसा कर दूजा महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावै वडभाग। गुर कै सब सच्चे बैराग, खर दर्शन वरतै वरतारा। गुर का दर्शन अगम्या पारा, गुर कै दर्शन मुक्तगत होए। साचा आवसै मन सोए रहाओ, गुर दर्शन उदरै संसारा। जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए। गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार। सतगुर सेवै परवार सधार, निगुरे कौ गतकाई नाही। अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख सां शरीर। गुरमुख ता कौ लगे ना पीर, जम काल तिस नेण ना आवै। नानक गुरमुख साज समावै, आसा महला तीजा।

भगत रता जन सहज सुभाए, गुर कै पैसा चै साज समाए, बिन गुर पूरे भगत ना होए, मन मुखरुने अपनी पत खोए, मेरे मानो हर भज मेरे मानो हर जापो सदा ते आए, सदा आनंद होवे दिन राती, जो इच्छा सोई फल पाए रहाओ, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम वसाए, अंतर निर्मल अमृत सरन आए, सदा सूचे साज समाए, हर प्रभ वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर ना कोए, गुर सागर पूरा भंडार, ऊतम रतन जवाहरिया पार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्शे बख्शनहार, आसा महला तीजा, गुर सायर

राए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाणै आवन जान रहै थिर नाम समाणै जमण मरना है संसार मन मुखा चेत।

जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सै समाए, नावै जेवड़ होर धन नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरा शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे वजाए, एहो मन अंधा बोला है, किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बलै ना सो जी पाए, गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिलै प्रभ सोए रहाओ, गुरमुख निरत हर लागै पाओ, पूरे ताल विचों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरै, गुर प्रसादी पव जल तरै, गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आवसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, निहचल भगत हर सो चित लाए, भगत रते तन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए, आसा कर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर कै पाणे सतगुर मिलै, सच सोजी होई, गुर प्रसादी मन वसै, हर बूझै सोई, मैं सहोदाता एक है, अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसै, ता सदा सुख होई रहाओ, इस जोग में निरपो हर नाम है, पाईए गुर विचार, बिन नावै जम कै वस है, मन मुख अंध गवार, हर कै पाणे जन सेवा करै, बूझै सच सोई, हर कै पाणे सा लाहिए, पाणे मन्या सुख होई, हर कै पाणे जन्म पदार्थ पाया, माती उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू, गुरमुख गत होई, आसा महला चौथा, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, तू करता सचियार मेंडा साई, जो तौ पावै सोई थिसी, जो तू देहे सोई हौ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन्ना वर्तन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जान आए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवे

मनुआ अस्थर बैल मन जो वो हर सिंचो गुरमत जेहत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हौ तब लग समारो नाम मेरे मन ऐसी भगत बने आई हौ हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुने उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुन गावे कब को नाचे पाप पसारे कब को हाथ फसारे हाथ पाप पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे कब को लोगन को पति आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हृदय सत्य आवो ता जय जय करे सब कोए आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कड़ चानन अज्ञाना दे राजाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छाओ सोई फल पावो फिर भूख न लग आए आपे हरे परंपर करता हरे आपे बोल बुलाए सही संत भले तुद पावे जिनकी पत पावे थाए नानक आखना राजे हर गुण ज्यो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग यासा कर अठवां राग यासा कर अठवें के काफी महला चौथा आया मरण तो राहो हम मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ पूर्व लिखे डेहे से आए माया चलन अज के कल तुरों फुरमाया बिरथा जन्म तिन्ना जिनी नाम विसारिया जुए खेलन जग के हो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सचे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया गुर प्रसादी बुझ सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया दर सचे सचियार महल बुलाया रहाओ अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है अंदर नाम ते आए हर गुण गाई है अंतर वस्जा नेक मनमुख नहीं पाई है हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआई है नानक आपे आप खुआई है गुरमत मन पर गास सच्चा पाई है राग आसावरी कर सोलवे के दो महला चौथा सुधंग एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौ आंदिन हर नाम कीर्तन कराऊं सतगुर मोको हर नाम बताया हौ हर बिन खिन पल रह ना सकूं रहाओ हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन हौ हर बिन रह ना सकूं हौ एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ रिद तार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान आसावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई
हाँ हर बिन खिन पल रह ना सको, जैसे कर हल बेल रिजाई रहाओ। हमरा मन बै राग बिरगत पायो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सके, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राग शरण जगदीशर प्यारे, मोहे सरदा पूर हर गोसाई। जन नानक कै मन अंध होत है, हर दर्शन निमख दिखाई।

तै एक सदी कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सदगुर पावे। तप करते तपसी भूलाए, पंडित मोहे लोभ सवाए। त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे दे कर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास। जो तू कह है सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। आसा महला पंजवा, ससू ते

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा मैं

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुरसबदी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब पकड़े नहीं।

हर हर राए। नाम तेरा जब जीवै नानक ओत पोत मेरे संग सहाए। आसा महला पंजवा अरड़ावै बिललावै निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै नाले लय सधावै अणहोंदा अजगर भार उठाए निंदक अग्नि माहे जलावै। परमेश्वर कै द्वारै जे होए बतीतै सो नानक आख सुनावै। भगत जना कौसदा आनंद है।

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहने स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवे ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरे पुगे भोग, आचार करे शोभा में लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

जो तू करे सोई प्रवाण, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवां, निकट जी कै सद ही संगा। कुदरत वरतै रूप रंगा, करै ना चुरै ना मन रोमन हारा। अवनासी अवगात्या गोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ। तेरे

वे मोहताजा वे प्रवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो, आसा महला पंजवा, हर रोड़ होशै रस माता, घर मैं वस्त बाहर उठ जाता, सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा, रहाओ वजो साहेब का से बिरानी, ऐसे गुनैशा दियो प्राणी, तेस्यो लूक जो सद ही संगी, कामना आवै सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला, आसा महला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहां उहां उन संग काम, बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा, रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन, आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद भरे पुरधारिया, अपना कार्ज आप सवारिया, पूर समगरी पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की, रहाओ नाम निधान।

साथ पूरा गुर पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन साचे नाए अठ सठ मजन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंध कू मैं निकस्यो मेरे भाई रे रहाओ महा अगाह अग्न का सागर गुर बोहिथ तारे रतनागर दुत्तर अंध बिख मेह माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जाप ताप कश युगत न मोरी गुर नानक सरणागत तोरी आसा महला पंजवा ते पदे दो हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन मैं ले जाता हर रस के माते मन सदा आनंद आन रसा मैं व्यापे चिंद हर रस पीवै अल मस्त मतवारा आन रसा सब हो चेरे रहाओ हर रस की कीमत कही ना जाए हर रस साधु हर सुमाए लाख करोरी मिले ना के हे जिसे प्राप्त तिस ही दे हे नानक चाख पए बिस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके दुरमत अपनी तारी होए निमाणी सेव कुमावै ता प्रीतम होवे मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटै तेरो सहसा सुख पावे तू सुख मन नारी रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा आत्म सुध बिख त्यास निवारी दासन की होए दा दासरी ता पावे सो बाहर द्वारी इही आचार इही ब्योहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी जो एहो मंत्र कमावे नानक सो भौजल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै नाकाम मिल साध संगत पज के

सेवा साध न जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। आसा महला पंजवा, तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही, तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही। तुमरी ओढ़ तुम्हारी आसा, बैठत उठत सोबत जागत, विसर नाही तू सास गिरासा रहाओ। राख राख सरन प्रभ अपनी, अग्न सागर विकराला, नानक के सुखदाते सतगुरु, हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा, हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या, ताप मुआ बिख खाए रहाओ। पाला ताऊ कछु ना व्यापै, राम नाम गुण गाए, डाकी कोचत कछु ना लागे, चरण कमल शरण आए। संत प्रसाद भय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा, औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिन सिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पयासा मिटे विसूरे रहाओ। जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझै बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओहना बाला बूढ़ा भाई। रहाओ नानक दास सा शरणाई, गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा, सदा सदा आया तुम परगास, सास संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांस सदा सुख पावै, किल विख जाहे सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूर्ण कर्म, सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म, दूजे करके चौतीस। आसा महला पंजवा, जाका हर स्वामी प्रबेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ। कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली, साध संग गुण गाया तोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मत मद सर, ए खेलत सब जुए हारे, सतसंतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह भीतर वारे। जन्म मरण चुके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल, गुरपूरे लेखन मैं तारे रहाओ। सब की रेन होए रह मनुआ, सगले दिसे मीत प्यारे, सब मद्दे रव्या मेरा ठाकरो, दान दे सब जी सुमारे। एको एक आप एक एक, एक है सगला पा सारे, जप जप होए सगल साथ जानो, एक नाम ते आए बहुत उधारे। गहर गंभीर बेअंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे, तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक, त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत या गोचर, एहो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करै चतराई, जा सबके तुझे मजार। मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार, देह सुमत सदा गुण गावा, मेरे ठाकर अगम अपार रहाओ। जैसे जनन जठर मैं प्राणी, ओरेता नाम आधार, आनंद करे सास सास सुमारे, ना पोहै अगनार। पर तन पर दारा पर निंदा, इन स्यो प्रीत निवार, चरण कमल सेवी दे अंतर, गुरपूरे कै आधार। गृह मंदिर महला जो दिसै, ना कोई संगार, जब

हर आज मिलक जोवन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्भ हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगह काम न आवे छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ। महाबचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्याण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त या गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावे। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंचना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना रखे, ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कत हू नाही, खसमे एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संतां टेक

बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुस मुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचा आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखे, मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावे, रबाब पखाव जो ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावे रहाओ। प्रथमे मन परबोधे अपना, पाछे अवर री जावे, राम नाम जप हृदय जापे, मुक्ते सगल सुनावे। कर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मंतन अर्प तरे गुरु आगे, सत पदार्थ पावे। जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे। आसा महला पंजवा, आदम चंडाली पई ब्राह्मणी, सूदी ते श्रेष्ठ आई रे, पाता लिया काशी सखनी, लहबर बूजी खाई रे। घर की बिलाई अवर सिखाई, मूसा देख डराई रे, आज कह वस गुर की नो के हर, कुकर तने लगाई रे रहाओ। बाई थूनिया छपरा।

सब जग बौराया ना मिले सुख पाइए। क्या कहिए किस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई, ए त्यो तुझे ते आओ, नानक प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम थुमारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुरु, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, तन सो कलयुग साध संकीर्तन गाइए, नानक नाम आधार हीओ। आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किश हुआ, यवर के जाने जाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंध कूप महा कोरते, बहा पकर गुर काढ़ लिए। निरपौ पय सगल पौ मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्य सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जीत तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना।

रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्योरी। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्योरी। दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समर्थ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बने ओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तै तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुरग्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सवारन हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा। दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर। चुका निहोरा सखी सहेरी भ्रम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर कर आया थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा। साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया। कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बिनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रपुरख दयालिया। आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइय पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई। रे रहाओ सिंचन हारे एक कै माली खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई। अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया नानक दास तरी तिन माया। आसा महला।

हुकम बूझ रंग रस माने सतगुर सेवा महा निर्वाणे जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवान नामृता सोई निर्वाण जा को मिलियो नाम निधाना पंडित नानक ताका पुरख जाना आसा।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार नरक स्वर्ग फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाई है एहो अस्थान गुरु ते पाई है रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बहर फन सुखा हर सिमरत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान सास सब जा का निशान गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया पणत नानक मेरा मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तै तै जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त अगाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कतै न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगिश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहें।

ना यो निर्तन ना हम भूखे ना उस दुख ना हम कौ दुखे अवरना को मारन वारा जियो हमारा जियो देन हारा रहाओ ना उस बंधनो ना हम बांधे ना उस तंदा ना हम तांदे ना उस मैल ना हम कौ मैला उस आनंद ता हम सदकेला ना उस सोच ना हम कौ सोचा ना उस लेप ना हम कौ पोचा ना उस भूख ना हम कौ तृष्णा जाहो निर्मल ता हम जचना हम किश नाही एक ओही आगे पाछे एको सोई नानक गुरखोए परम पंगा हम ओए मिल होए एक रंगा आसा महला पंजवा अनक पात कर सेवा करिए जियो प्रांतन आगे धरिए पानी पखा करो ता जब मान अनक बार जाइए कुर्बान साई सुहागन जो प्रभाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनिहार उनकी रण बसे जी नाल माथे भागता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब नेमा कर्म धर्म अर्पो सब होमा गर्भ मोह तज हो बोरेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आरा दो दिन सरैन ए सेवा सादो पहे कृपाल गोपाल गोबिंद सा संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोए प्रभ की प्रीत हम मैं मल खोए प्रभ की प्रीत

प्रभु की प्रीत पय सगल निदान, प्रभु की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभु की प्रीत सद शोभावंत, प्रभु की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभु की प्रीत एहो पवजल तरै, प्रभु की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभु की प्रीत सगलो उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओठ प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, पूपत होए कै राजक माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंग रसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इन स्यों प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागै होए कै मीठी, गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी, अगर उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ै नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगसार, संत रहत सुनो।

वा की महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जाके केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जाके एक समान प्रभ अपने बिनयावर ना जाने। कोट कोट अग काट नहारा दुख दूर करन जी के दातारा, सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संति शली, ताका संग बांछे सुरदेव अमोग दर्श सफल जाकी सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संत है टहल दीजे गुणतास, आसा महला पंजवा सगल सुख जप एक नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साधका संग जिस पेड़ लागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद ओय आनंद पावे जिस मृत मन होए परगासा, ताकि गत में तो कहन ना जावे रहाओ। वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान साध संगत जाके हर हर नाम, प्रगट्यो सो जानो सगले भवन पतत पुनीत ताकि पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय ताकि गत में तो कथन ना जाए, आठ पहर कर जोड़ते आवाओ उन साधा का दर्शन पावाओ, मोहे गरीब को लेहोर लाए नानक आए पै सरनाए, आसा महला पंजवा। आठ पहर उदके सुनानी सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़े नाही बहुर बहुर तिस लागे पाई, साल ग्राम हमारे

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सभी ऊपर झूलै, ता का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिस ही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गे राम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवा पंच पदा, जे पेंड लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लिखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवां महला पंजवां। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवां, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग, आसा महला पंजवा। मीठी आग्या पिर की लागी, सौकन कर की कंत त्यागी। प्रे सोहागन सिंगार करी, मन मेरे की तपत हरी। भलो भयो प्रे कहया मानिया, सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार, ओह अविनाशी अगमे अपार। ले पखा प्रे चलो पाए, पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत, क्या जाना क्यों पानी कंत। मोहे अनाथ गरीब ने मानी, कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा, सुख सहज मेरा तन सोहागा। कहो नानक मोरी पूर्ण आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाएठ गौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचाए मनमुख मूराखा गुरु नानक बहां पकड़।

संत तृप्तासे हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभु तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर, सोजन मरता नित नित चूर, जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे, महाबिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक, गत पाई है गुरपूरे टेक, आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, कल मल दोग सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर, मिटे उपद्रय मन ते बैर, गुर पूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वसगत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक ते सुपर कुर्बान, आसा महला पंजवा, गाव लेहे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जा की सेवा सर्व सुख पावे, अवर काहू पह भव ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद ब्रह्मन वासी है रहाओ। जा का दान निखूटे नाही, पली पहां तो सब सहे समाही, जा की बख्शना मेटे कोई, मनवा साई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण, प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण, ओट गही निरपौ पद पाई है, सास सास सो गुणित गई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नजर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुरपास, नानक मंगे हर तन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सल का होवा सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल ते सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अग्न बुझी

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागट सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा गुर बिबेक सतसार, ओह आद जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा साई अलख्या पार, पोरी मन वसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ मन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंधकणा मन तन जापने। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा। आसा महला पंजवा लाख भगत आराधै, जपते पियो पियो कवन जुगत में लावो, निर्गुण बिखई थियो। तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब। रहाओ सदा सहाई संत पेखै सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया से मरण में सूर विसूर। दास दा सतन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौण। जैसे पास

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जिन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड़ पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब प्रम पाओ पागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कै उजली तिस दासी गनिया रहाओ। वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जी ठहरंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कह सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिए एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिछायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेट हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तउ लो जो मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ। सगन अप सगनो तिस कौ लग है जिस जीत ना आवे,
तिस जम नेण न आवई जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक दूसर कह पह जावो। हाँ मांगो आन ल जावो सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सतपुरख की सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के ब्योहारी। अवर बिसारी बिसारी नाम दान गुरपुर दियो, मैं इहो आधारी रहाओ। दुखन गावो सुख पी गावो, मार्ग पंथ समारी। नाम दृढ़ गुरमन में दिया, मोरी तसा बुजारी। दिन पी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। सत संगत में विश्वास होए, हर जीवत मर्त संगारी। जन नानक कहो एहो दान देहो, प्रभ पावो संतरे न्योर तारी। श्रवणी कथा नैन दर्श पेखो, मस्तक गुर चरनारी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवा महला पंजवा। जिसनों तू असर कर मानै ते पाहुन दो दाहा, पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मानु क्या करे है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी। एक राम भजन लै लाहा रहाओ, जैसे वस्त्र देह उडाने दिन दोए चार पोराहा। पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा। जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा, आवगे आ गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा। अरे मन लेखे चाले लेखे बैसे लेखे लेंदा साहा, सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा। आसा महला पंजवा अपुष्ट बाते पई सिजरी, दूत दुष्ट सजनई। अंधकार मैरतन प्रगासियो मलीन बुद्ध हशनई। जौ कृपा गोबिंद पई सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई रहाओ। मोहे कृपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई। संग बैठनो कही ना पावत हुण सगल चरण सेवई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते मन सगल त्रिसन बुझ गई। एक बोल पी खपतो नाही साध संगत सीत लई। एक जीही गुण कमन मखाने अगम अगम अगमई। दास दास दास को करियो जन नानक हर शरणई।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे। आसा महला पंजवां दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभु अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा चार बरन चौहा के मर्दनो खड़ दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोय शली रे। जिन मिल मारे पंच सूर बीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे। रहाओ वड़ी कौम वस भागै नाही मोहकम फौजा ठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवां नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे। रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लायकी रे बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग

दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खेन राम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक उड़हारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सा संगानी रहाओ। पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी। चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हाओ हाओ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी। राग आसा महला पंजवा कर बारवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल स्यान पा भज पार ब्रह्म निरंकार। एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बूझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरन समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ। महापौजल लंघिए सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पर होए। नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर। नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मंतन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग। दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ। हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जनते आवे तरण कौ संसार। कर्म धर्म अनेक किरिया सभी ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुर देव। नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान। जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रभतान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग। खाट लाभ गोबिंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग। हर को नाम जपिए नीत सास सास त्याए सो प्रभ। त्याग अवर प्रीत रहाओ। करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप। त्याग सगल सियाण पा आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार। चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ। सर्व सुख बड़ी वड्याई जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा उद्यम करो करावो ठाकर। पेखत साधु संग हर हर नाम चिरावो रंगन। आपे ही प्रभ रंग मन में राम नामा जाप। कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखन का चाओ। दया करो किरमे अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किलविख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पव नासै हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगमे गोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप कृपाल कृपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मलमूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव रहाओ। तू आप करता सब श्रेष्ठ तरता सब मैरिया समाए। धर्म राजा बिस्माद होवा सब पई पैरी आए। सब जुग त्रेता द्वापर पणिए कल जुग ऊतमो जुगा माहे। अह कर करे सो वह कर पाए कोई ना पकड़िए किसै थाए।
हर जियो सोई करे, जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़। नानक दान मांगे अपने संता देह हर दर्स, राग आसा महला पंजवा कर तेरवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ, महा बिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनी संगारे। नरक पवंते नरक पड़ंते तिनके कोले उदारे, कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे। कवन उपमा देव कवन वडाई नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ, मोह कुटंब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे। मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे। कर कृपा राखे सत संगे नानक शरण आहे, आसा महला पंजवा ते पदे ओहा प्रेम पिरी रहाओ। कनक माणक गज मोतियन लालन नै ना नहीं, राजन भागन हुक्म ना साधन किश किश ना चाही। चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही, नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री। आसा महला पंजवा गुरै दिखायो लोए ना रहाओ, इते उते कट कट कट कट तू ही मोहेना। कारण करना तारण तरना एक है सोहेना, संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोएना। आसा महला पंजवा हर हर नामया मोला, ओहो सह सोहेला रहाओ। संग सहाई छोड़ ना जाई ओहो अगे अतोला, प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला। आसा महला पंजवा अपनी भगत निबाहे, ठाकर आयो आहे रहाओ। नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे, एह मुक्ता एह जुगता राखो संत सगाहे। नाम ते आवाओ सह समावाओ नानक हर गुण गाहे। आसा महला पंजवा ठाकर चरण सुभावे, हर संतन पावे रहाओ। आप गवाया सेवक माया गुण रस रस गावे, एक आसा दर्स प्यासा या ना पावे। दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे। आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते अवर दै बसावो तिस बिन को नाही। प्रभ सरणी आई है सर फल पाई है सगले दुख जाही। जियन को दाता पुरख विदाता नानक कटकट आही। आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ। राज कहावै हो कर्म कमावै बांध्यो नली परम सुआ। कहो नानक जे सतगुर भेटिया सो जन निचल थिया। आसा महला पंजवा कर चौदवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद ओहो नेहो नवेला अपने प्रीतम स्यो लाग रह रहाओ। जो प्रभ पावै जन्म ना आवै, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै। प्रभ संग मिली जय हो मन दी जय, नानक नाम मिलै अपनी दया करहो। आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे, तुम बिन धीरज को ना करै रहाओ। सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए, प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही। वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध सरण प्रभ संग वसै। आसा महला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद बिकार माया माद सोयो, सूई बूझ ना आवै। पगर केस जम उठारियो तद ही कर जावै। लोभ बिखिया बिखै लागे,
हिर वित चित दुखाही खिन भंगना कै मन माते असर जाने नाही रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारै सुनै नाही डोरा निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा डान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेखै ना परिया जिहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान तज सियानप शरण नानक आया।